0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा कल संपन्न हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव की बातचीत के अलावा इस यात्रा की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रहीं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्बेकिस्तान यात्रा के मायने 11 समझौतों पर हस्ताक्षर से कहीं बढ़कर हैं। महत्वपूर्ण खनिजों और यूरेनियम की सप्लाई से लेकर व्यापार, रक्षा, डिजिटल भुगतान और शिक्षा तक, हिंदी और संस्कृत से लेकर खेल और विरासत संरक्षण तक, इस दो दिवसीय यात्रा ने भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को एक विस्तृत और व्यापक ढांचा प्रदान किया है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक संबंधों का बढ़ना, $5 अरब के व्यापार लक्ष्य को 3 साल के भीतर हासिल करने का संकल्प, दीर्घकालिक ऊर्जा सहयोग और राज्य एवं नगर स्तर पर अधिक सहभागिता से भारत की उज्बेकिस्तान के साथ दोस्ती को एक नई गति मिलने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री आज और कल किर्गिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे कल राष्ट्राध्यक्षों के सत्र में भी भाग लेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर कल बिश्केक पहुंचे। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष कासिमालीफ आदिलबेक अलेशोविच ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। उनके स्वागत के लिए पारंपरिक किर्गिज नृत्य का आयोजन भी किया गया। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन के लिए किर्गिजिस्तान की यात्रा पर हैं। आशा है कि शिखर सम्मेलन से अलग श्री मोदी संगठन के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री मोदी ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित इस क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत SCO सदस्यों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और चरमपंथ मुक्त क्षेत्र बनाने की दिशा में काम करेगा। नेपाल में बाढ़ के कारण मृतकों की संख्या बढ़कर 700

92 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अब भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में एक और बाढ़ के कारण सस्पेंशन पुल बह गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। करीब 50 लापता भारतीय नागरिकों से संपर्क हो गया है, लेकिन 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से अमेरिका में दक्षिण कैरोलिना के एशविले में G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने सुकमा जिले में नक्सलियों के ठिकाने का भंडाफोड़ कर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। सुरक्षा बलों ने बेलपोचा गोमपाड़ के घने जंगल में छिपाकर रखे गए विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया। ये संयुक्त अभियान सुकमा जिला बल, जिला रिजर्व गार्ड DRG और बस्तर फाइटर्स ने चलाया। ये कार्रवाई हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली कैडरों से मिली विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर की गई। भारत के अभय सिंह ने तुआंकू महरिज स्क्वाश ट्रॉफी जीत ली है। मलेशिया के सेरेम्बन में अभय ने PSA चैलेंजर टूर 15 इवेंट के फाइनल में हांगकांग के हेनरी लेउंग को 3-2 से हराया। ये अभय का 13वां और इस वर्ष का दूसरा PSA टूर खिताब है। इससे पहले उन्होंने मार्च में मुंबई में इंडियन ओपन खिताब जीता था। दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में भारत ने जीत के साथ शानदार शुरुआत की है। भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ग्रुप बी में आज बांग्लादेश और इंडोनेशिया आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। बेल्जियम में फाइनल में जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराया। जर्मनी की तरफ से मिशेल स्ट्रुथॉफ ने गोल किया। जर्मनी का ये चौथा पुरुष विश्व कप खिताब है। इससे पहले अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिजिस्तान की अपनी दो दिन की यात्रा के पहले दिन राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया। इस अवसर पर योग मानस अकादमी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर कार्य करने वाले 4 प्रतिनिधिमंडल मौजूद थे। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बिश्केक स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री आज शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इनमें रूस, ईरान, किर्गिजिस्तान और आर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठकें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले उज्बेकिस्तान की दो दिन की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कल ताशकंद में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ के साथ बातचीत की। दोनों नेता भारत उज्बेकिस्तान संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी 3M से भारत में अनुसंधान और विकास, उन्नत विनिर्माण और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वित्त मंत्री ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर 3M के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलियम ब्राउन के साथ वार्ता की। चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देशभर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण नौसेना के पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया INS निपुण गहरे समुद्र में चलाए जाने वाले गोताखोर और जटिल अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में कक्षा 12वीं में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए ₹25,000 की सहायता राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव कल भोपाल में विद्यार्थियों के बैंक खातों में ये धनराशि अंतरित करेंगे। उज्जैन में आज भगवान महाकाल की 5वीं शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये श्रावण भाद्रपद के महीने में होने वाली शोभा यात्राओं का हिस्सा है। इस बार शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण 84 महादेव हैं। शोभा यात्रा शाम 4 बजे मंदिर से निकलेगी और रात लगभग 8 बजे महाकालेश्वर मंदिर में संपन्न होगी। शेयर बाजार आज दोपहर के सत्र में 0.5% की मामूली गिरावट के साथ काम कर रहे थे। निफ्टी 150 अंक गिरकर

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी आपको और सभी सुनने वालों को मेरा यानी चंचल वर्मा का नमस्कार। और एक लंबे अरसे के बाद मैं आज आपसे मिल रही हूँ यहाँ।
1: बिल्कुल, और मुलाकात तो होती ही रहती है ना, अब सखी सहेली के साथ माइक के साथ मुलाकातें बारी बारी से होती रहती है सखियों से। और एक मिलना होता है, मन का मिलना
2: जी,
1: वो बहुत ज़रूरी है। बस वो मिला, वो मुलाकात होती रहे, ये काफ़ी होता है। और जब मन मिलता है तो मुझे लगता है कि दो लोगों का मन मिलता है तो दोस्ती बहुत लंबे समय तक कायम रहती है।
2: बिल्कुल सही।
1: दो लोगों का जब मन या दिल मिलता है तो दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। और जब दो दिल मिलते हैं तभी तो दाम्पत्य के सूत्र में बनते हैं ना।
2: और मिल तो जाते हैं, दाम्पत्य सूत्र में बन जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं बहुत लंबी पारी तक उन्हें साथ जाना होता है। इस लंबी पारी तक साथ चलने के लिए बहुत सारे सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं, कई बार समझौते भी करने पड़ते हैं, कई बार एक बहुत सारी बातों को कहते हैं कि समझ के लेना वाली बात जो होती है कि हमेशा होड़ नहीं करनी है, झगड़ा नहीं करना है, तू मैं नहीं करनी है, सिर्फ उन बातों को तालमेल कैसे बिठाए ताकि घर में एक सुख शांति का वातावरण बना रहे, सबके बीच में प्रेम बना रहे। तो सुखी दाम्पत्य जीवन अगर चाहिए तो उसके लिए हमारे जो सुनने वाले लोग हैं अगर वो बहुत लंबी पारी तक आ चुके हैं, यानी कि आज उनके विवाह, जो वैवाहिक जीवन है उसको 35 बरस 25 बरस हो चुके हैं या 15 बरस हो चुके हैं, तो अब तक जीवन कैसे रहा और कैसे तालमेल बिठाया उन्होंने अपने साथी के साथ में।
1: और जब दोनों में से कोई एक नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, तकरार होती है, तो मेल कैसे होता, अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। और ये तो आज हम ये बातें इसलिए शुरुआत में ही करें कि सुखी दाम्पत्य जीवन आज का एक मुद्दा है, विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे श्रोता भी इस चर्चा में शामिल हों।
2: और सोमवार के दिन हम जो प्रादेशिक व्यंजन है उनको लेते हैं, और अगस्त के पूरे महीने में हमने लिए हैं पश्चिम बंगाल के जो अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं ना, चाहे वो तीखे चटपटे हों या मिठास लिए हुए हों, ऐसे व्यंजन हमने बताए हैं। तो आज ये आखिरी सोमवार है अगस्त के महीने का, तो बहुत सारे जो व्यंजन हम जिन्हें शामिल नहीं कर पाए हैं उनको आप ज़रूर बताइए उनके बारे में, और कुछ नाम हमने दिए हैं हमारे श्रोताओं को, उनके बारे में वो बताएं और उनकी रेसिपीज लिखकर साझा करें।
1: और कथा सुधा की बात भी करेंगे, कथा सुधा सुनवाएंगे। और आज एक ख़ास दिन और है, एक ऐसी कवित्री लेखिका का जन्मदिन है जिन्हें जब हम याद करते हैं तो बस प्रेम का भाव, प्रतिरोध का भाव मन में पैदा होता है कि उनकी लेखनी में प्रेम भी था, प्रतिरोध भी था, और बड़ी बेबाक लेखिका मानी जाती हैं। रसीदी टिकट आप सबने पढ़ी होगी, और भी उनकी कृतियों की चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा उनका लिखा ये गीत सुन लेते हैं।

0: कादम्बरी फिल्म का ये गाना था और ये इसलिए गाना खास तौर से सुनाया गया, अमृता प्रीतम की याद को ये गाना समर्पित था। और अमृता जी की के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम श्रोताओं को दे दें कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें भारत के जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इससे भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें अपनी पंजाबी कविता अज आँखा वारिस शाहनू के लिए बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी और इस कविता में भारत विभाजन के समय पंजाब में हुई जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं का बहुत ही दुखद वर्णन है। और इसके अलावा इनके उपन्यास हैं पांच बरस लंबी सड़क, पिंजर, अदालत, कोरे कागज, 49 दिन, सागर और सीपियां, और इनकी आत्मकथा रसीदी टिकट। मुझे लगता है हमारे श्रोताओं ने रसीदी टिकट तो जरूर पढ़ी होगी, कहानी संग्रह कहानियां जो कहानियां नहीं है कहानियों के आंगन में, और संस्मरण कच्चा आंगन, एक थिसारा और बहुत सारी अन्य कृतियां भी हैं इनकी। और जब भी हम अमृता प्रीतम को पढ़ते हैं तो खास तौर से महिलाएं उन्हें उनसे प्रेरणा भी पाती हैं क्योंकि उनकी उनकी जो लेखनी थी उसमें पंजाब की मिट्टी की सौंधी गंध थी, उसमें प्रेम की आवाज़ थी, विरह भी था, विद्रोह भी था, तो ये सब कुछ एक महिला को परिपक्व और परिपूर्ण बनाता है। तो अमृता जी की याद को आज नमन कर रहे हैं
1: और अब सुनते हैं कथा सुधा।

0: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: छह आने का टिकट, इस कहानी में पिछले हफ्ते आपने सुना।
2: आप ही किशोर जी हैं
3: जी।
2: आप तो मुझे जानते ही हैं, राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह, वही जिसने आपको छह कविताएं भेजी थी, जिस पर आपने लिखा था कि खो गई, और जिस पर मैंने 12 कविताएं भेजी तो आपने लिखा था कि आंधी में उड़ गई।
3: अच्छा।
2: और फिर मैंने 18 कविताएं भेजी थी तो आपने लिखा था कि जिस कंपोजिटर को आपने कविताएं कंपोज करने को दी है उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो साधु बन गया, कविताएं अपने साथ लेता गया। लिहाजा मैं खुद अपनी 24 कविताएं लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हूं।
3: अच्छा, तो आप ही राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह हैं। हाँ हाँ हाँ हाँ, आपके दर्शनों से मैं कृतार्थ हो गया।
2: कल रात मैंने ये तय किया कि मुझे आपका संपर्क पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि दफ्तर में दिन भर आप व्यस्त रहते हैं और आपकी अमृतवाणी मैं नहीं सुन पाता, लिहाजा मेरा आपके घर में आपके साथ ही ठहरना उचित होगा।
3: जी?
2: जी जी जी, इसके साथ ही बाजार का भोजन मुझे रुचिकर नहीं होता, यहाँ घर का भोजन मिलेगा।
3: मेरी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आदमी मैं मुरव्वत वाला हूं और आसानी से ना नहीं कह सकता हूं, लिहाजा अब श्री राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह मेरे निजी अतिथि बनकर मेरे घर पर जम गए। रोज सुबह वो मेरे साथ चाय पीते थे, भोजन करते थे, दफ्तर जाते थे। उनका ट्राम का किराया मुझे ही देना पड़ता था क्योंकि कंडक्टर के पास आते ही वे मेरा मुंह देखने लगते थे। इतवार के दिन सुबह मेरे साथ चाय पीते हुए श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह ने मुझसे कहा,
2: किशोर जी
3: जी,
2: आज तो आपकी छुट्टी है।
3: हाँ,
2: तो ऐसा कीजिए ना, मुझे कलकत्ता घुमा दीजिए।
3: अरे राम खिलावन जी, मुझे दुख है कि मुझे आपकी सेवा करने से वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आज कई लोगों से मिलने जाना है।
4: अरे भाई भीखू,
3: देखो बाबूजी को आज शहर घुमा लाओ, और 2 6-6 आने वाले टिकट ले लेना दिन भर के, और ये लो 1 रुपया, ठीक है?
2: नहीं नहीं, एक ही टिकट लाना, एक ही टिकट, मैं अकेले ही घूम लूंगा।
3: अच्छा ठीक है। उस दिन उन्होंने जो चाय पी तो मैं दंग रह गया। 4 टोस्ट और छटाक भर मक्खन के अलावा उन्होंने पूड़ियों के साथ 4 लंगड़ा आमों का नाश्ता भी किया। इसके बाद वे 6 आने वाला टिकट जेब में रख कर कलकत्ता घूमने के लिए निकल पड़े। चलते हुए उन्होंने मुझसे कहा था,
2: आप मेरे भोजन की प्रतीक्षा ना कीजिएगा, रात में लौट कर भोजन करूंगा।
3: जी ठीक है। दिन भर मैं कामकाज में व्यस्त रहा। रात को मैं करीब 11 बजे घर लौटा, लेकिन एक अजब सा सन्नाटा मुझे मालूम हुआ। नौकर चाकर सभी मौजूद थे, लेकिन न मुझे भक्तिपूर्वक प्रणाम करने वाला मेरा भक्त था, और न लगातार प्रश्नों की झड़ी लगाने वाला, अजीब अजीब शंकाएं उठाने वाला, और मेरी सूनी जिंदगी की सुख शांति हरने वाला मेरा अतिथि था। यानी श्री राम खिलावन शरण जी अभी तक लौटे नहीं थे। नौकर मेरा खाना ले आया, लेकिन यकीन दिलाता हूं मुझसे खाना न खाया गया। मैं न जाने क्यों अपने अतिथि के लिए चिंतित हो उठा।

0: राम खेलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ? वो रात को घर क्यों नहीं लौटे? क्या संपादक किशोर जी उन्हें सकुशल घर वापस लाने में सफल होते हैं? जानने के लिए सुनिए छह आने का टिकट, इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग।
1: कलकत्ता बहुत अच्छा नगर नहीं है और श्री राम खेलावन अपने जीवन का जहाज लेकर अकेले ही इस कलकत्ता नामक महासागर में निकल पड़े थे। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं बस के नीचे तो नहीं आ गए, या रास्ता तो नहीं भूल गए, या उन्हें कोई भगा तो नहीं ले गया। मुझे अच्छी नींद भी नहीं आई। बिस्तर पर मैं करवटें बदलने लगा। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि श्री राम खिलावन शरण के प्रति मुझमें इतनी अधिक ममता कैसे आ गई। एकाएक मैं चौंक उठा, टेलीफोन की घंटी बज रही थी। मैं उठा, घड़ी पर मेरी नजर गई और उस समय 3 बजे थे। धड़कते दिल के साथ कांपते हुए हाथों से मैंने रिसीवर उठाया। हेलो,
2: भवानीपुर थाने से बोल रहा हूं। आपके यहां कोई राम खेलावन शरण प्रसाद तो नहीं ठहरे?
1: जी, खैरियत तो है, जिंदा है ना?
2: जी हाँ, है तो खैरियत से, लेकिन पिए हुए हैं, आध घंटा हुआ लाए गए हैं, आप उन्हें ले जाइए।
1: जी जी जी, रिसीवर मैंने रख दिया। अच्छा, तो हमारे श्री राम खिलावन शरण प्रसाद सिंह इतने पहुंचे हुए आदमी है, भाई मान गए। विश्वास नहीं होता कि ऐसे भी होते हैं। ऐसा लग रहा है जमीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं। अब ये राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह जैसे आदमी इतना पी सकते हैं कि थाने में बांध दिए जाए, तो हम जैसे न पीने वालों के तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। बहरहाल, अपने अतिथि को हवालात से लाना ही था और मैं हवालात पहुंचा। पूरे 5 रुपए देकर राम खिलावन शरण को मैंने छुड़ाया और उन्हें घर ले आया। घर आते ही श्री राम खिलावन शरण ने खींच कर एक गिलास पानी पिया और फिर मत्था पकड़कर बैठ गए। अब देखिए कि उनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं और वे मौन बैठे हैं, न हिलते हैं, न डोलते हैं, न बोलते हैं, न चालते हैं। आखिर मुझे ही पूछना पड़ा, राम खेलावन शरण जी, भला आपको ये क्या सूझी कि आप पीकर रास्ते में निकले?
3: मैं शपथ से कहता हूं कि मैंने मदिरा पान का जघन्य पाप नहीं किया है।
1: क्या?
3: बदमाश पुलिस वाले ने मुझे जबरदस्ती बंद कर दिया।
1: अच्छा, वो क्यों भला?
3: अरे ये मेरा दुर्भाग्य है, मुझ में अब जान नहीं है, इतना थका हुआ हूं, आज 6 आने की टिकट ने मुझे मार डाला।
1: ये कैसे भला?
3: देखिए किशोर जी, आपने मुझे 6 आने का टिकट दे ही दिया था।
1: हाँ?
3: जब मैं कलकत्ता घूमने निकला तो मैंने 2 आने पैसे और साथ में ले लिए कि वक्त जरूरत काम आएंगे। अब मैं रवाना हुआ, ट्रॉम पर बैठ जाता था, जहां तक जाती थी वहां तक जाता था और उसी ट्रॉम पर धर्मतल्ला वापस आता था। टॉलीगंज गया, बालीगंज गया, बहला गया, खिदरपुर गया, पार्क सर्कस गया, सियालदह, राजा बाजार, श्याम बाजार, बाग बाजार, डलहौजी, हाई कोर्ट गया, बहु बाजार गया, हैरिसन रोड गया, नीमतल्ला भी मैं घूम आया।
1: तो
3: शाम को कुछ थोड़ी सी भूख लगी थी तो पास में 2 आने पैसे थे तो नाश्ता डट कर किया। अब करीब 10 बजे मैं हैरिसन रोड और चितपुर रोड चौराहे पर पहुंचा, वहां उतरा मैं। मैंने हिसाब लगाया, 6 आने के टिकट में मैं 1 रुपया 12 आने का घूम चुका था, और अब घर आने में 2 आने का और सफर करता तो इस प्रकार 1 रुपये 14 आने घूम चुकता, और 6 आने में अपने हिसाब से मुझे 1.5 रुपया घूमना चाहिए था, और इसलिए मुझे संतोष करके उस समय लौट आना चाहिए था। लेकिन मालूम होता है कि उस समय मुझ पर शैतान सवार था, क्योंकि एक ख्याल आया कि खर्च 6 आने नहीं बल्कि 8 आने हुए, क्योंकि 2 आने का नाश्ता तो घूमने के सिलसिले में ही मैंने किया था, और 8 आने के हिसाब से मुझे 2 रुपए का घूमना चाहिए था। इधर यह ख्याल आया और उधर मुझे एक ट्राम दिखाई दी। जिस पर बेलगछिया लिखा था, मुझे ख्याल आया कि बेलगछिया अभी तक नहीं गया। मैं उस ट्राम में बैठ गया। बेलगछिया पहुंचकर मैं इस आशा से ट्राम में बैठा रहा कि ये वापस जाएगी, लेकिन एक आदमी ने आकर मुझसे कहा,
4: अब आप जाइए।
3: मैंने कहा मैं धर्मतल्ला जाऊंगा।
4: 11 बज गए हैं, घड़ी देख रहे हैं आप, अब यहां से कोई ट्राम नहीं जाएगी।
3: किशोर जी मैं चौंक उठा। मैंने कहा कि क्या आप कोई ट्राम नहीं जाएगी हैं? नहीं जाएगी यहाँ से।
4: कह तो दिया नहीं जाएगी, अभी बस मिल जाएगी, चले जाओ।
3: मैं उठा वहां से, लेकिन मेरी जेब में 1 पैसा नहीं, मतलब बस पर कैसे आता। मैंने उस आदमी

0: प्यास जोरों से लगी थी, पैर लड़खड़ा रहे थे, आंखें निकल पड़ती थी, और उसी समय एक पुलिस वाले ने बढ़कर मुझसे पूछा कि तुम कौन हो। मैं ऐसा बेकाबू और बेहोश था कि मेरे मुंह से शायद शब्द ही नहीं निकले, और अगर निकले भी होंगे तो टूटे फूटे बिना मतलब के रहे होंगे। तब तक एक दूसरा पुलिस वाला आ गया। उसने पहले से पूछा कि मामला क्या है। दूसरे ने जवाब दिया कि मालूम होता है सर, दारू पिए हैं, पैर सीधा नहीं पड़ते, जबान नहीं खुलते, नशा में बेहोश है। तो दूसरे ने कहा कि तो फिर थाने ले चलो, कल सुबह होश आ ही जाए। उस समय मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन या तो मैं उन्हें नहीं समझा सका या फिर वो मुझे नहीं समझ सके।
1: ओहो, ये बात है भिकू। अरे खाना ले आओ थाली में। भाई राम खिलावन जी, आपका अनुभव तो बहुत बुरा हुआ। अब मेरी सलाह यह है कि आप कल सुबह अपने घर वापस चले जाएं। आप अच्छी साइट पर घर से नहीं चले थे।
0: जी हाँ किशोर जी, बात तो ठीक है, लेकिन लेकिन मेरे मामा के ससुर के बहनोई जो टिकट कलेक्टर हैं और मुझे कलकत्ता मुफ्त में लाए थे।
1: अच्छा।
0: कह गए थे कि करीब 15 दिन में वापस लौटेंगे, तब साथ ले जाएंगे। 12 दिन तो हो गए हैं, 2-3 दिन में आने वाले हैं, तब तब चला जाऊंगा।
1: लेकिन इस घटना को हुए करीब 15 दिन हो गए हैं और मेरा घर अभी तक आबाद है, क्योंकि श्री राम खिलावन शरण नारायण प्रसाद सिंह के मामा के ससुर के बहनोई अभी तक वापस नहीं लौटे हैं।
2: छे आने का टिकट। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की लिखी ये कहानी। आज आप सुन रहे थे इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। इसमें भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। राम खेलावन के रूप में जी श्याम, किशोर जी यानी सूत्रधार जयंत पात्रीकर, पुलिस कर्मी यूनुस खान, ट्राम का कर्मचारी दीपक केसावलेकर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक, परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: विविध भारती से।
1: अरे हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं। तो बस यही बताना है कि ये कार्यक्रम है सखी सहेली, जो आज पहली बार जिन्होंने ट्यून किया होगा उनके लिए जरूरी है बताना कि सखी सहेली कार्यक्रम। और अब हम अपने एक मुद्दे पर बात करने चल रहे हैं जो एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, वो है शादी, दाम्पत्य। शादी दरअसल अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आती हैं। जीवन में यदि खुशियां हैं तो गम भी जिंदगी का हिस्सा है। ऐसे में जरूरी है कि हम इनमें संतुलन बनाकर चलें। लेकिन संतुलन बनाए कैसे? पति और पत्नी दरअसल होते एक सिक्के के दो पहलू हैं।
0: जी ममता जी।
1: दोनों में से किसी एक को कभी भी किसी मोड़ पर एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम इसे अपनी परेशानी नहीं समझे, बल्कि अपना कर्तव्य समझे और एक दूसरे के

0: मन को समझें।
1: बिल्कुल, और ये जो रिश्ता है बहुत समझदारी से काम लेने का होता है, प्यार और विश्वास पर टिका होता है जो रिश्ता है पति पत्नी का। कभी भी इस इमारत को बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो नींव है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि नींव ही अगर मजबूत नहीं हुई तो जो इमारत है उसका गिरने का खतरा हमेशा ही बना रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से जब पति पत्नी के रिश्ते की इमारत है, इसके दो आधार स्तंभ होते हैं प्यार और विश्वास, ये स्तंभ अगर कमजोर हो जाएंगे तो रिश्ता ज्यादा समय टिक ही नहीं पाएगा। और जो भी पति पत्नी है जिनके बीच ये दो बातें बहुत मजबूत हैं, इनकी प्यार भी है और विश्वास भी है, उनका दाम्पत्य जीवन मान के चलिए कि हमेशा सुखमय रहता है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि थोड़ी सी जो खट्टी मीठी बातें हैं वो तो जीवन का हिस्सा है, चलनी भी चाहिए।
0: बिल्कुल, देखिए ना, इसी तरह की कुछ बात हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखी है, लिखा इन्होंने कि कहते हैं कि जो धनुष बहुत मुश्किल से मुड़ते हैं वो चटक कर टूट जाते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी यही बात लागू होती है। दाम्पत्य जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है, जो देंगे वही आपके पास वापस आएगा। अगर एक दूसरे की खूबी को आप सराहते हैं तो कमियों को भी नज़रअंदाज करना सीखिए, एक दूसरे की असहमति को समझें और ध्यान दें कि कहीं आप कंट्रोल फ्रीक तो नहीं होते जा रहे। एक दूसरे की कमियों और खूबियों को ही उसकी विशेषता समझें और हर कदम पर अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश हरगिज ना करें, वरना जीवन में सिवाय कलह के और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ तुम समझो कुछ हम समझे, ये वाला सूत्र अपनाएं और दाम्पत्य की गाड़ी को दोनों पहियों पर चलने दें।
1: और ये जो इन्होंने लिखा है ना कि बदलने की कोशिश ना करें, जब आप किसी से अगाध प्रेम करते हैं तो आप उसको उसकी हर अच्छाई बुराई, उसकी कमियां खूबियों सबके साथ उसे अपनाते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। कहीं आपको सिर्फ खूबियां देखकर किसी से प्रेम हुआ और बाद में कमियों के देखते अगर झगड़े में चीज़ें बदल जाती हैं तो ये सुखी दाम्पत्य जीवन की निशानी रही है, क्योंकि जहाँ खूबियाँ होती हैं वहीं कमियाँ सब में होती हैं। और एक चीज़ और है ममता जी, कि जो चीज़ आपको कमी लगती है वो किसी अन्य को खूबी लग सकती है, और जो आपको खूबी लगे वो किसी अन्य को कमी लग सकती है। ये सबका देखने का समझने का अपना नजरिया होता है।
0: और दिन भर आरोप प्रत्यारोप भी दाम्पत्य जीवन को कमजोर बनाता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तो दोनों की जहाँ समझदारी होती है वहाँ लंबे समय तक दाम्पत्य टिकता है, जबकि कोई बहुत बड़ी समस्या ना हो, बड़ी घटना ना हो। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि 6 आने का टिकट भाग 2 का इंतज़ार है, देख इन्होंने सुन लिया, और ये जो विषय है सुखी दाम्पत्य जीवन मेरे कोमल दिल पर मरहम है और प्रहार भी, बहुत ही नाजुक विषय है, चर्चा का इंतज़ार है, सहन शक्ति की परीक्षा है। जब विवाहित जीवन 30 साल पूरा होता है तो साथ रहना भी है, एक दूसरे का के साथ दुश्मनी भी है, तो फिर भी कट ही जाएगी, ऐसा इन्होंने लिखा है। दरअसल इन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है, शायद हो सकता है कि छोटी सी दरार पड़ जाती है दाम्पत्य जीवन में तो लोग उसको बहुत बड़ा भी बना लेते हैं कई बार। हाँ। और कई बार उस दरार को पाटने की कोशिश नहीं करती है तो टूटने की नौबत आ जाती है, तो कोशिश हो कि वो दरार पाट लिया जाए।
1: और हमारे श्रोता ने लिखा ना कि कई बार मुश्किल वक्त में साथ देना होता है, तो बहुत सारी मुश्किलों का समय आता है जब पति पत्नी की भी एक बहुत कठिन परीक्षा होती है। अभी मान लीजिए आपके जो पतिदेव हैं यानी किसी स्त्री के पति हैं, उनकी नौकरी छूट गई या बिजनेस में कोई बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, और ये ऐसे समय में ना एक जीवन साथी की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। हो सकता है कि अगर कोई महिला है वो कोई बिजनेस वीमेन है यानी कि वो नौकरी करती हैं या कोई व्यापार करती हैं और उनके व्यापार में घाटा हो गया, तो चाहे वो पति हैं या पत्नी हैं, कामकाज जब मंदा होता है या छूट जाता है तो घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं और बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल होने लगती हैं। ऐसे में परिवार में लोगों का तनावग्रस्त होना ज़रूरी है, तो अगर आपके पति तनावग्रस्त हैं ऐसी चीज़ों को लेकर या पत्नी तनावग्रस्त हैं तो दोनों एक दूसरे का साथ दें और प्रेमपूर्ण व्यवहार करेंगे तो वो इस परिस्थिति से बहुत जल्दी बाहर निकल आते हैं। और ऐसे में यदि अगर ताने देंगे कि भाई तुम्हारी वजह से ही ये नुकसान हुआ, तुमने ऐसे ठीक से नहीं किया, तो ये चीज़ें हैं ना घर में चीज़ों को और क्लेश बना देती हैं।
0: मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की बात को समझें, और जहाँ कोई एक परेशान है तो साथी को चाहिए कि वो आपकी उस परेशानी को दूर तो नहीं कर सकता है कोई एकदम से, लेकिन उस परेशानी में ये जताना बहुत ज़रूरी है कि हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे वो ये नौबत जो आपने ऑफिस की बात कही चाहे वो हो, चाहे एक दूसरे में से कोई एक जोड़ा बीमार पड़ जाता है तब की समस्या है, या फिर कई कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसका शिकार हो जाता है, तब तो निश्चित रूप से दोनों में से एक की ज़रूरत पड़ती है। बात ज़रूरत की नहीं है, ज़रूरत तो आप और भी तरीके से पूरी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत यहाँ पर बात यह है कि आप जिससे प्रेम करते हैं दाम्पत्य जीवन में निश्चित रूप से प्रेम की नींव होती है, मतलब प्रेम की बुनियाद पर ही टिका होता है, उस प्रेम को टूटने से कैसे बचाएं।
1: और जैसे आपने कहा ना कि चिंता ना करते हुए अगर कोई भी एक शख्स ये कह देता है कि आप चिंता मत करो मैं हूं ना आपके साथ,
0: बिल्कुल,
1: तो ये जो शब्द हैं बहुत कहते हैं कि मजबूत बना देते हैं।
0: अब एक गाना सुनते हैं।

0: तो ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे और हमारी बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि पति पत्नी के आपसी विश्वास और साथ से दाम्पत्य जीवन भी सुखी और बच्चे भी सुखी होते हैं। बात यहाँ बच्चे की है तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, कई बार दाम्पत्य जीवन को स्थायी रखने के लिए, टिकाऊ रखने के लिए बच्चे की भूमिका बहुत अहम होती है। कई बार बच्चे पति पत्नी के झगड़ों में आकर अच्छी बड़ी भूमिका निभाते हैं और झगड़े को ख़त्म भी करवा देते हैं, और कई बार ये माता पिता भी बच्चे के लिए अपने झगड़े ख़त्म कर देते हैं।
1: बहुत सही कहा आपने। और कई बार ऐसा भी होता है ना, जब मुश्किल का समय आता है, जैसे हम एक बात कर रहे थे, हमने एक सिर्फ कारोबार या नौकरी की बात की, ऐसे समय में पत्नियां एक तरीके से इस चीज को टूल की तरह इस्तेमाल करती है, भाई अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं मायके चली जाऊंगी। यानी कि बात बात पर आपको अपने, चाहे वो कोई छोटी सी नोकझोंक वाली बात है या कोई बड़ी समस्या आपके साथ में हुई है दाम्पत्य जीवन में,
0: अब उल्टा भी होने लगा है। हमने तो सुना है कि अब महिलाएं ये कहती हैं कि मैं मायके नहीं जाऊंगी, मैं तुमको घर से निकाल दूंगी। अच्छा।
1: तो भाई दोनों ही परिस्थितियां जो है वो ठीक नहीं है, ना तो पति को घर से बाहर निकालने वाली परिस्थिति ठीक है, ना ही मायके जाने वाली है। जो भी कोई समस्या आपके जीवन में आई है, जो दाम्पत्य जीवन के साथ में उलझनों को बढ़ा रही है, तो उसे सुलझाने का प्रयास करना है और दोनों को मिलजुल कर ही करना है। अगर किसी तरह से हमें पता लगता है कि जीवन साथी के साथ कोई स्वास्थ्य समस्या भी है, किसी रोग से वो ग्रसित हैं, तो ऐसे समय में भी धैर्य से काम लेना है। अगर वो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, चाहे वो पति हैं या पत्नी, तो उनका सहयोग अगर मिलेगा, आप ध्यान देंगे, तो वो जो भी आपका रोग है या आपकी समस्या है, उससे जल्दी स्वस्थ होकर, सुरक्षित होकर उबर कर बाहर आ सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और देखिए, कुछ मिलती जुलती बातें हमारे श्रोताओं की ओर से भी आ रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन की कुंजी खुशी है, जो पारस्परिक सम्मान, अटूट विश्वास और खुले मन से संवाद रूपी की चेन में बंधी हुई है। अध्यात्म और ज्योतिष दृष्टि से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शिव पार्वती को ध्यान में रखना चाहिए, और इस मतलब आध्यात्म की ओर ले जाने की बात इन्होंने कही है। दरअसल आज जो भागदौड़ की जिंदगी है, ऐसे में आपको सबसे बड़ी कुंजी तो यही है कि आप एक दूसरे की बात को सुने और समझें, तो काफ़ी कुछ मुश्किलें हल हो जाती हैं।
1: एक बड़ा छोटा सा बात छोटी सी कही है श्रोता ने, लेकिन अहम बात है। उन्होंने लिखा है कि सुखी दाम्पत्य जीवन कोई बना बनाया नियम नहीं, ये दोनों की भागीदारी की निरंतर प्रयासों और आपसी समझ के बिना, किसी शर्त के बिना एक दूसरे को स्वीकार करने की भावना से ही ये रिश्ता फलता और फूलता है।
0: चंचल जी, दरअसल ये बड़ी बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही नाजुक डोर होती है दाम्पत्य की, और इस नाजुक डोर को टूटने से बचाना ही सही होता है। हालांकि अब दौर बदल चुका है, जब हम सभी इस बात पर चर्चा करते हैं और स्त्री विमर्श की जब बात आती है, तो यही होता है कि आपकी जब आपका मन एक दूसरे से नहीं मिल रहा है तो आप एक दूसरे के साथ को छोड़ दें, लेकिन बहुत मुश्किल होता है छोड़ना भी। जोड़ना जितना आसान होता है, छोड़ना उतना ही कठिन होता है। तो जब आप घर में बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है और बहुत ज़्यादा रोज़ रोज़ की मारपीट, लड़ाई झगड़े जब एकदम अति हो जाती है, तो निश्चित रूप से छोड़ना ही बेहतर होता है। लेकिन उसके लिए लड़कियों की बचपन से जो कंडीशनिंग होती है, लड़कियों की जो पढ़ाई लिखाई से लेकर उनकी जो परवरिश होती है, उनको शुरू से ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है। अब पिछला समय जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही सम्मान देना चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए। अमूमन हमने देखा है कि घरों में लड़कियां कभी पिता के सहारे, कभी भाइयों के सहारे, फिर कभी दोस्तों मित्रों के सहारे ही अपना जीवन जीती हैं। तो जब पति पत्नी के बीच ऐसी नौबत आती है, तो वो औरत ये सोचती है कि अब हम कहाँ जाएं, अब हम क्या करेंगे, किसके सहारे जिएंगे। तो ये जो सहारे वाली बात मन में आती है, इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जो दौर बदल चुका है।
1: और कई बार जब त्रिकोण वाली परिस्थिति आती है ना, अगर आपका कोई साथी है, कोई मित्र है, पति की कोई अगर महिला मित्र है या पत्नी की कोई पुरुष मित्र है, तो उनको लेकर भी कई बार संदेह मन में इस तरह के आते हैं कि दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पे आ जाता है। और कई बार आजकल मोबाइल जो चीज़ है, हम एक दूसरे की अंदर झांकने के लिए उस मोबाइल को देखने की कोशिश करते हैं। अगर वहाँ कोई पासवर्ड है वो हमें ना मिले, तो शक कहते ना पक्का हो जाता है, गहरा हो जाता है कि भाई पासवर्ड क्यों लगाया है आपने अपने मोबाइल पर, ऐसा क्या है जो हम नहीं देख सकते। तो ये चीज़ें भी कई बार परिस्थितियों को बहुत उलझा देती हैं, तो चीज़ों को समझ के लेने वाली बात है।
0: और पासवर्ड तो अमूमन महिलाओं को, मतलब महिलाओं का पासवर्ड पुरुष ही तय करते हैं, तो ये तो शायद भेद अब तक नहीं मिट पाया है। और ऐसी तमाम छोटी छोटी बातें हैं जो जिसे हम अनदेखा करके दाम्पत्य जीवन को संभाला जा सकता है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब एक साथी की नाइट शिफ्ट होती है और दूसरा घर में है, मान लीजिए पति की नाइट शिफ्ट है और पत्नी घर में रहती है और घर की पूरी देख रेख कर रही है, उसके कंधे पर पूरी घर की जिम्मेदारी है, तो यहाँ भी टसल होने के चांस होते हैं, क्योंकि उसको नींद की ज़रूरत होती है पति को, और वो घर उतना मैनेज नहीं कर पाता है, तो भी मुश्किलें होती हैं। तो ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जिसके कारण टकराव होते हैं।
1: कुल मिला के कहना यही है कि हर समय, चाहे वो कठिन समय है, चाहे आपके

0: प्यार के पल हैं, एक दूसरे का हाथ हमेशा थामे रहें और अपनी ज़िंदगी की मुश्किल भरे दौर में भी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। जब आप खुशी एक साथ साझा करते हैं तो दुख को भी एक साथ साझा करें।
1: साथ छोड़ने की जब बात आती है तो बहुत ज़रूरी है कि स्वावलंबी होना महिलाओं का। महिलाएँ अगर आत्मनिर्भर हैं और उनकी भी आजीविका है साथ में, तो जब ऐसी नौबत आती है तो उनके ऊपर दुख का पहाड़ नहीं टूटता है। इसलिए बचपन से लड़की और लड़के को बराबर रखना चाहिए। और बात जब दाम्पत्य जीवन को संभालने की आती है तो यही हम सभी यही कहते हैं कि तोड़ने से बेहतर होता है जोड़ना। तो जितना हो सके जोड़िए एक दूसरे को। फिलहाल सुनिए ये गाना।

0: देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना अभिमान फिल्म, ये भी तो दाम्पत्य जीवन पर ही आधारित
1: किस तरह से थोड़े से अहम को लेकर दाम्पत्य जीवन टूट जाता है।
0: तो अहम का टकराव नहीं होना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है, सुखी दाम्पत्य जीवन भाई दाम्पत्य जीवन सुखमय ही नहीं अपितु आनंद युक्त होना चाहिए, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी लोगों के पास आनंद नहीं है, बहुतेरे अपने उस बेगाने प्यार की तलाश और मोबाइल में कर रहे हैं, तो क्या किया जाए।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो चलिए अब कुछ खट्टे मीठे चटपटे जिस तरह के भी व्यंजन हैं इनकी बात हो जाए। और आज हम बात कर रहे हैं जिन व्यंजनों की, उसमें से एक है शुक्तो। ये एक पारंपरिक बंगाली मिश्रित सब्जी होती है जिसका स्वाद हल्का कड़वा और मलाईदार होता है। मुख्य सामग्री इसमें होती है करेला, कच्चा केला, बैंगन, सहजन की फलियाँ यानी कि ड्रमस्टिक्स, और राधुनी मसाला और दूध। इसे बंगाली दोपहर के भोजन की शुरुआत के समय मेन कोर्स के रूप में परोसा जाता है।
0: और एक व्यंजन इस तरह से बना है, सोनार मूंग दाल। ये भुनी हुई मूंग दाल से बनने वाला खास और शाही व्यंजन कहलाता है। इसमें दाल को पहले सूखा भून दिया जाता है जिससे इसमें एक बेहतरीन सोंधी खुशबू आती है। मुख्य सामग्री है सोना मूंग दाल, छोटे दाने वाली खास तरह की दाल, घी, काजू, किशमिश और हरी मिर्च। इसे बंगाली शादियों, त्योहारों और विशेष पूजा के अवसरों पर चावल के साथ परोसा जाता है।
1: इसी तरह से एक और रेसिपी हमारे पास आई है, ये मोचार घंटों, और ये बिहारी रसोई में भी बनाया जाता है बंगाली रसोई के साथ साथ। और जिनके भी घर में केले का पेड़ लगा हो वहाँ केले का गोंद गिरता है, उससे फूल बनता है। और ये इन्होंने रेसिपी बताई है कि उस फूल को निकाल कर सब्जी बनाई जाती है। थोड़ी सी मेहनत इसमें ज़्यादा लगती है लेकिन उसके भीतर पुंग केसर को निकालना पड़ता है और थोड़ा सा एक कसैला भी लगता है। इसे उबालकर बेसिक मसालों के साथ और बिना प्याज लहसुन के बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन जाती है। उबालने के बाद पिसे हुए चने या मसूर दाल में मिलाकर इसकी पकौड़ियों की तरह बनाकर इसके कोफ्ते भी बनाए जाते हैं।
0: पातिशाप्ता जानती हैं आप क्या होता है? नहीं जानती है।
1: जी
0: चलिए बताइए। तो हमारी श्रोता ने ये लिख भेजा है, पातिशाप्ता ये एक तरह की पारंपरिक बंगाली मिठाई है और जो पतले चीले की तरह दिखती है। ये बेहद मीठी और मलाईदार होती है। मुख्य सामग्री इसमें लगती है मैदा, सूजी और चावल के आटे का घोल, जिसमें खोया कद्दूकस किया हुआ, मतलब मावा कद्दूकस करके नारियल और खजूर का गुड़ भरा जाता है। और इसे विशेष रूप से पौष संक्रांति के त्यौहार पर सर्दियों में बनाया जाता है।
1: इसी तरह से एचौरा डालना, ये कच्चे कटहल की एक गाढ़ी और मसालेदार तरी वाली सब्जी होती है। इसका स्वाद और बनावट काफ़ी हद तक जो मांसाहारी व्यंजन होते हैं उनकी तरह, मतलब देखने में लगता है। और इसमें मुख्य सामग्री होती है कच्चा कटहल, आलू, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, बंगाली पंचफूरन के साथ और गर्म मसाले के साथ इसे परोसा जाता है और इसे शाही मटन भी कहते हैं।
0: और जब भी ये सब व्यंजन बनाएं आप तो उस समय गाना ज़रूर सुने, वो भी विविध भारती से। फिलहाल ये गाना सुनें।

0: अब जरा घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी समय नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और चंचल वर्मा का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: श्रोताओं, प्रत्येक सोमवार सेहतनामा कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं सेहत से जुड़ी समस्याएं और उनके निदान पर विशेषज्ञों से बातचीत। बालों की सुंदरता और इसके लचीलेपन को लेकर हम बड़े सजग रहते हैं और हर तरह से इनकी सुंदरता के लिए प्रयास भी करते रहते हैं, फिर भी बालों को लेकर एक समय के बाद कुछ न कुछ समस्याएं देखने में आ ही जाती हैं। पिछले हफ्ते आज ही के दिन बालों की समस्या और देखभाल इस विषय को लेकर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत हमने आपको सुनवाई थी। आज इसी बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाते हैं।
1: अच्छा, मुझे ये बताइए कि कई पुरुषों में जो

0: बालों की समस्या वो दो तरह से होती हैं। एक तो ये कि बाल पीछे की तरफ सरकते चले जाते हैं और ये माथा जो है वो बड़ा होता चला जाता है। दूसरा जिसको हम हिंदी में चांद निकलना कहते हैं, बेल्डनेस आती है बीच के हिस्से में। इन दोनों को रोका जा सकता है, इनका कोई उपाय है? या ये जेनेटिक है और ये खानदानी चीजें हैं तो इसको टाला नहीं जा सकता?
1: एक भ्रम है लोगों में।
0: अच्छा,
1: कि जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट नहीं है। ये भ्रम। अगर मैं कहूं कि डायबिटीज भी जेनेटिक है तो ट्रीटमेंट मत लीजिए। हो सकता है?
0: नहीं हो सकता है, मुश्किल हो जाएगी।
1: तो जरूरी समझना है कि जेनेटिक बीमारियां जो होती है, साइंस ने इतना रिसर्च कर लिया कि उसमें ट्रीटमेंट लाई हुई है।
0: ओके।
1: और हमने ऐसे ट्रीटमेंट देखे हुए हैं कि जिसको रिस्पॉन्स काफी तरह होता है। सिर्फ ट्रीटमेंट का तरीका अलग अलग है। स्टेज वन, स्टेज टू, अलग अलग स्टेजेस में हमको ट्रीटमेंट देनी होती है। तो चांद निकला है, शायद मेडिकल लाइन इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हो, उससे फर्क नहीं गिरेगा क्योंकि बहुत बड़ा चांद है।
0: बहुत बड़ा चांद है, सिर पर बहुत बड़ा चांद।
1: तो उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
0: जी जी जी, ओके।
1: उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट है।
0: उसकी भी बात हम आगे चलकर करने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो क्या है, उसकी बात आगे करते हैं। तो ये टाला जा सकता है, मतलब ये कि अगर कोई खानदानी मामला भी है, जेनेटिक मामला भी है, तो भी डॉक्टर के पास जाएं।
1: या क्योंकि ट्रीटमेंट है, रिसर्च ने ट्रीटमेंट निकाली है उस पर।
0: जी,
1: आपको लेना या नहीं लेना आपका डिसीजन है।
0: राइट, बिल्कुल। अच्छा, ये जो चारों तरफ बड़े सजीले विज्ञापन आते हैं जिसमें लहराते हुए बाल नजर आते हैं और ये शैम्पू लगाने से बाल चमकीले, और वो कमाल कमाल के वर्ड्स का इस्तेमाल है जो हम यहाँ नहीं दोहराना
1: चाहेंगे। तभी तो उससे विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन का काम ही है कि आप देख के थक हो जाओ।
0: हाँ, कि ये रिचनेस आती है, फलाना, अलग अलग टेक्निकल चीजें बताई जाती हैं कि ये विटामिन से भरपूर है और ये दादी नानी के नुस्खों से भरपूर है। क्या कोई शैम्पू सचमुच में बालों का भला करता है, या बिना सोचे समझे शैम्पू का इस्तेमाल करने का मतलब है कि उल्टा असर हो जाएगा?
1: मैं उल्टा नहीं बता सकूंगी कि उल्टा असर होगा। शैम्पू बहुत माइल्ड तरीके से स्लोली काम करता है। इट्स अ सपोर्टिव। जैसे कुछ शैम्पू जो है कि हमारे स्काल का इकोसिस्टम होता है, हमारे स्काल पर कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे स्काल को हेल्दी बनाते हैं और हेयर को हेल्दी बनाते हैं। जब गंजापन आता है तो इसका जो ये है सपोर्टिवनेस या इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाती है। तो कुछ शैम्पू ये है, इंग्रेडिएंट्स जो शैम्पू में होते हैं ये बालों के इकोसिस्टम को रेस्टोर करने का काम करते हैं स्लोली। पर कुछ शैम्पू ऐसे, अब कोई हार्श शैम्पू आजकल तो नहीं लगाता है, अच्छे वाले शैम्पू ही लगाते हैं, लेकिन वो शैम्पू में ये इकोसिस्टम को रेस्टोर करने की कैपेसिटी है या नहीं है आपको नहीं पता चलेगा।
0: जी जी,
1: आपको डॉक्टर ही बता सकेगा कि ये शैम्पू में ये सिस्टम है, आप ये लगाइए। नॉर्मल लोगों को देखना है कि आपका हार्श शैम्पू नहीं लगा। हार्श आप कैसे समझोगे? तो जब झाग ज्यादा होता है, हमारी मेंटेलिटी क्या है,
0: झाग ज्यादा है तो अच्छा है,
1: अच्छा है, पर वो ज्यादा झाग वाला शैम्पू आपका स्किन का, हेयर का मॉइस्चर निकाल लेता है पूरा।
0: ओहो, जो हर धारणा जो है लोकप्रिय धारणा, उसमें आज आप भयानक तोड़फोड़ कर रही हैं। जी, ये क्योंकि हमें तो लगा कि वाह वाह, क्या झाग वाला शैम्पू है।
1: एडवर्टाइज देखोगे तो झाग वाला शैम्पू से भरपूर ऐसे और लोगों को लगता है कि लेना चाहिए।
0: जी,
1: तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, जितना ज्यादा झाग उतना ज्यादा तुम्हारा मॉइस्चर
0: चले जाएगा। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शैम्पू की फ्रीक्वेंसी क्या हो और उसका सही तरीका क्या है,
1: उसके लिए आपकी लाइफस्टाइल समझना जरूरी है। अगर आप रोज जिम जा रहे हो या पसीना आ रहा है तो आपको रोज करना चाहिए, पर करने के टाइम पर आपको ध्यान देना है कि वो शैम्पू माइल्ड तरीके का हो।
0: ये ऐसा झाग वाला नहीं हो,
1: झाग वाला नहीं चाहिए। अदरवाइज महिलाओं में 2 से 3 बार, पुरुषों में डेली या 3 से 4 बार। अभी जिसको स्केलिंग है, डैंड्रफ है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी पड़ती है, अलग टाइप का शैम्पू लेना होता है। और जब भी आप शैम्पू करें और आपके बाल ड्राई होते हैं तो पहले दिन या 1 घंटा पहले आपको ऑयल लगाना जरूरी है, कोकोनट ऑयल। से क्या होता है, कोकोनट ऑयल का एक कैपेसिटी है जो हेयर के अंदर के सेल तक जाके रुकता है। तो इससे उसमें से का मॉइस्चर है ना, वो शैम्पू के टाइम पर नहीं निकलता जल्दी से।
0: ओके,
1: तो ड्राई नहीं होते हैं,
0: बहुत महत्वपूर्ण बात है ये।
1: और फिर भी आपको लगता है कि ड्राई हो रहे हैं तो कंडीशनर लगाना चाहिए, भले ही आप 2 मिनट के लगाओ 5 मिनट के लगाओ, लेकिन कंडीशनर लगाइए। पहले वाला कंडीशनर मतलब तुम्हारा ऑयल जो कोकोनट ऑयल है, बाद में वाला कंडीशनर मतलब अभी मार्केट में अच्छे वाले कंडीशनर आते हैं। इसके बावजूद भी आपके बहुत ड्राई है, लस्टरलेस है, तो आपको देखना चाहिए, उसको बोलते हैं हेयर शार्प डिसऑर्डर्स, मतलब आपकी शार्प की क्वालिटी कुछ खराब हो रही है, वो भी जेनेटिक होता है और नॉन जेनेटिक भी होता है।
0: ओके,
1: तो वो एक एनालिसिस करके लेना जरूरी होता है।
0: जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: मजेदार ये है कि हम बातें बालों की कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और गाने भी जो हैं वो बालों से जुड़े सुनवाते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि शैम्पू की फ्रीक्वेंसी की सारी बातें हो गई कि किस तरह से शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना चाहिए। आपने बड़ी सूझबूझ के साथ नारियल के तेल का जिक्र किया। आज के लड़के या कुछ हद तक लड़कियां भी बालों में तेल लगाने से परहेज करते हैं क्योंकि रोज बाहर जाना है, वो गंदा दिखेगा, बाल चिपचिपे दिखेंगे। ये तेल लगाना कितना जरूरी है?
1: तो मैं कहूंगी तेल लगा के बाहर नहीं जाइए, रात को तेल लगाइए, सुबह आपको शैम्पू करना है तो जो दिन शैम्पू करना है उसके पहले रात को तेल लगा लीजिए।
0: जी,
1: तेल लगाने का और एक फायदा होता है, ये रिसर्च बोलती है। और ये जब मैं सोचती हूँ कि हमारे टाइम पर हम लोग तेल लगा के शैम्पू करते थे बचपन में,
0: बिल्कुल
1: एक क्या बोलते हैं, माहौल रहता था, रूल था कि मम्मी आती थी अच्छे से तेल चंपी करती थी और दूसरे दिन हम शैम्पू करते थे। रिसर्च ने बताया है कि कुछ तेल ऐसे हैं जिसकी इकोसिस्टम मेंटेन होती है, जो मैंने बोला है इकोसिस्टम,
0: हाँ जी,
1: वो तेल से मेंटेन रहती है।
0: तो देखिए कि ये हमारी पुरानी
1: परंपरा
0: कितनी साइंटिफिक है,
1: साइंटिफिक, तभी साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। तो अभी क्या हुआ कि पेरेंट्स वो टाइम के चले गए, अभी मॉडर्न पेरेंट्स आए हैं तो उनको ये साइंटिफिक नॉलेज नहीं है।
0: जी,
1: मैं तो कहती हूँ तेल लगाना जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है
1: इकोसिस्टम के हिसाब से, अगर आपको बालों के इकोसिस्टम मेंटेन करने। इस सिंपल एक एग्जांपल देते हो, आप बालों को मॉइस्चराइजर, हाथों को मॉइस्चराइजर लगाते हो, क्यों लगाते हो?
0: रूखे हो जाते हैं।
1: स्काल्प को हम मॉइस्चराइजर क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सीबम रहता है अपने बालों में, एक सीबम जो बालों में बहुत ज्यादा रहता है, सीबेसिस ग्लैंड बहुत रहता है, तो मॉइस्चर की जरूरत नहीं पड़ती इसलिए। लेकिन ओवर पीरियड जब हम धूप में जाते हैं, हमारी जब उम्र होती है तो इसका प्रमाण भी सीबम सिक्रीशन का कम हो जाता है। तो हम रोज नहीं लगा रहे ऑयल, पर बॉडी में हम रोज लगाते हैं स्नान करने के बाद, ड्राई होते हैं, तो कभी कभी सर के बालों को, स्किन को तेल लगाना जरूरी है।
0: ये फ्रीक्वेंसी क्या हो, इसका भी कंफ्यूजन दूर होना चाहिए।
1: हफ्ते में 2-3 बार।
0: आप
1: शैम्पू तो हफ्ते में 2-3 बार कर ही रहे हो। और बहुत चिपचिप नहीं, थोड़ा सा, जैसे आप मॉइस्चराइजर बॉडी को लगा रहे वैसा समझ के लगाइए तेल।
0: जो लोग नहीं लगाते हैं बालों में तेल, चाहे वो अपनी मान्यता की वजह से या फैशन की वजह से या लापरवाही की वजह से, उनके बालों पर क्या असर पड़ता है?
1: देखो, सिर्फ बालों से नहीं, ये बालों का जो इकोसिस्टम सपोर्टिव सिस्टम है, आपका मेन कॉज क्या है, अगर हेयर फॉल का मेन कॉज अलग है, अगर मैंने उसको नहीं ठीक किया तो सिर्फ तेल लगाने से काम नहीं होने वाला।
0: जी, वो एक पूरा स्कैल्प और पूरा इकोसिस्टम,
1: ये होलिस्टिक अप्रोच ले करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: दूसरा मैं कह रही थी कि जो आपने देखेंगे ना, जो तेल लगाते हैं, रेगुलर तेल लगाते हैं, उनका शायद बाल झड़ने का प्रमाण जल्दी ठीक हो जाता है।
0: जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर बोल दीजिए, बहुत सारे लोगों को समझ में आए।
1: जो बालों में तेल लगाते, बालों में मतलब स्किन पर, जब बालों में हम तेल लगाते हैं वो कंडीशनिंग करके होता है, सर के स्किन को तेल लगाते हैं वो इकोसिस्टम इंप्रूव करने का काम करता है,
0: उनके बाल सही सलामत रहते हैं,
1: रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: जी बहुत बढ़िया है। अब यहां पर एक गाना आएगा और वो सावन की घटा फिल्म का गाना है, जुल्फों को हटा दे चेहरे से, थोड़ा सा उजाला होने दे। सुनते हैं ये गाना।

0: इतने जुल्फों के गाने हम बजा रहे हैं और इतनी इम्पोर्टेंट बातें कर रहे हैं, आपने कई ऐसी पॉपुलर मान्यताओं में तोड़फोड़ कर दी जिनको हम मानते थे कि जैसे झाग वाला शैम्पू, तेल ना लगाना, ये तमाम बातों को लेकर बड़ी उपयोगी जानकारी आपने दी। और बालों को लेकर जो फैशन है, मतलब तरह तरह के कलर्स लगाना, आजकल तो लोग पर्पल और नीला और हरा क्या क्या रंग बालों के कर लेते हैं, वो कितना नुकसानदेह, अब इस पर आ जाते हैं। पहले
1: आपका बैंक बैलेंस है और आपको खर्चा करना है, कितना खर्चा करना चाहते हो ताकि आपका बैंक बैलेंस थोड़ा नेगेटिव में जाए, ये आपको डिसाइड करना है।
0: बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है ये।
1: मतलब ये जो कलरिंग करते हैं बहुत, जो डार्क कलर अलग तरीका करते हैं,
0: पहले ये नहीं होता था लेकिन आजकल बहुत ही, वो जो बम्बैया शब्द है, अतरंगी कलर्स,
1: ये बढ़िया आपका फैशन है
0: जी,
1: पर ये फैशन आएगा आपको नुकसान के साथ आएगा,
0: राइट?
1: आपको चलने वाला है?
0: नहीं
1: नहीं, आप बोल रहे नहीं, पर किसी को चलने वाला भी हो सकता है
0: जी।
1: आप सोचिए कि नुकसान के साथ आने वाला है तो ये बैगेज के साथ आएगा, आप तैयार है उसके लिए, गो अहेड।
0: बहुत सही बात है, मतलब ये जो लोग तरह तरह के बालों में कलर्स लगाते हैं, चाहे वो गोल्डन कलर्स हो,
1: हाँ, लेकिन क्या होता है, इन लोगों को बहुत ऐसे एक मन में इच्छा होती है, बहुत सारे
0: ट्रेंड के साथ चलना,
1: ट्रेंड के साथ चलना, तो मैं ट्रेंड के साथ नहीं चलूंगी तो कैसा लगेगा, मैं करके देखती हूँ। ठीक है, एक बार करके देखो, दो बार करके देखो, आप डिसाइड करो कि आपको डैमेज कितना हो रहा है, देन यू टेक अ कॉल कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हम ऐसे जनरलाइज मैं स्टेटमेंट नहीं कर सकते कि नहीं करो,
0: लेकिन करना आपको है, देखना है कि कितना नुकसान हो रहा है,
1: हो रहा है नुकसान, आप वो नुकसान सहन करने को तैयार है, ठीक है, फिर आगे बढ़िए
0: जी। और एक उम्र के बाद, आजकल तो एक उम्र के पहले भी बाल सफेद हो जाते हैं और लोगों को जरूरत पड़ती है बाल काले करने की, और उसमें केमिकल कलर्स का इस्तेमाल कुछ लोग करते हैं जो बाजार में उपलब्ध होते हैं, या आप जाके प्रोफेशनल से लगवाते हैं, और दूसरा तरीका है मेहंदी लगाने का। इन दोनों मुद्दों पर अपनी बात रखिए।
1: जो ग्रे होते हैं, जिनके ग्रेइंग जो शुरू होती है 20 साल के पहले, उसको जेनेटिक बैकग्राउंड है
0: जी, उसको रोक सकते हैं,
1: कम कर सकते हैं, कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है, पर बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ तरह के लोशंस है मार्केट में जिसके रिजल्ट्स हमने देखे हुए हैं, पर इसका 100% नहीं उपयोग होता है, 40-50% इम्प्रूवमेंट होता है लोगों में। और जो उम्र के हिसाब से ग्रे बाल होते हैं उसको रिवर्स करने का अभी साइंस ने कोई तोड़ नहीं डाला है उसमें, तो उसको आपको कलर करना होता है। अभी कलर कौन सा करें, कलर में बहुत सारे वैरायटीज है, लेकिन एक स्टैंडर्ड कंपनी का जिससे ड्राई नहीं होते हैं और जिसकी एलर्जी नहीं है, कुछ लोगों को डाई की एलर्जी भी होती है तो उनको वो कलर नहीं सूट होता है, फिर बगैर वो इनग्रे पीपीडी फ्री वाला कलर लेना पड़ता है।
0: आजकल वो एक सेंटेंस बहुत चलता है ना, अमोनिया वाला कलर और अमोनिया से फ्री कलर,
1: डैमेज कम हो जाता है
0: जी,
1: क्योंकि ये तो हेयर डाई है, अमोनिया रहेगा तो थोड़े ड्राई होते हैं बाल, डैमेज मतलब ड्राई होते हैं, तो अमोनिया फ्री से ड्राइनेस कम हो जाता है। जैसे ही आप, वैसे ही जैसे आपका कलर डाई भी लाइट कलर का

0: उसके साथ आपको कंडीशनर करिए तो आपके ड्राई नहीं होंगे बाल। तो ये जो डाई करना है कलर डाई, अगर आप ग्रे के लिए करना चाहते हैं तो नुकसान नहीं होता है, हम सभी लोग करते हैं, मैं भी करती हूँ। पर आप बहुत अलग तरह के मतलब रेड वाले कलर करोगे तो आपके बाल ड्राई होते रहेंगे, फिर वो ड्राई बालों को ठीक करने के लिए आप दूसरी प्रोसेस करोगे, तीसरी प्रोसेस करेंगे, तो ये तो विशेष साइकिल चालू रहेगी।
1: बिल्कुल, तो इसलिए समझदारी से चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है। यहाँ पर एक गाने की बारी है।

0: ये जो हेयर कलर्स हैं, क्या ये कोई बड़ा नुकसान अचानक कर सकते हैं कि बालों का एकदम बड़ा पैच अचानक गायब हो गया?
1: अगर आपका कलर लो क्वालिटी का है, उसमें इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, रिएक्शन हो गई आपको, यस, कुछ लोगों को रिएक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ये रिएक्शन वाली बात हुई तो डेफिनेटली यस,
0: तो इसको लेकर सावधानी की जरूरत है। एक बहुत बड़ी और कॉमन समस्या हर उम्र के लोगों में है और वो डैंड्रफ की समस्या है, जिसको लेकर भी विज्ञापन इंडस्ट्री बहुत सक्रिय है। डैंड्रफ से जुड़ी भ्रांतियां दूर कीजिए।
1: डैंड्रफ के साथ बहुत लोगों को एक स्टिकी टाइप का डैंड्रफ होता है, किसी लोगों को फ्लेकी टाइप का डैंड्रफ होता
0: है,
1: गिरता रहता है। लोगों में धारणा ऐसी है कि डैंड्रफ हुआ तो मुंह से हुए, ये गलत है। वो डैंड्रफ फेस पर आता है और फेस में है, वो अलग है। मुहासे का पैथोजेनेसिस बिल्कुल अलग है और डैंड्रफ का अलग है
0: जी।
1: डैंड्रफ के प्रकार जो होते हैं उसमें आपको समझना चाहिए माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, क्योंकि वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट अलग होती है। यहाँ मैं सावधान करना चाहूंगी कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब हम स्कोप के नीचे देखते हैं, बहुत सारे आधे लोगों को स्कैल्प सोरेसिस होता है। ये स्कैल्प सोरेसिस अलग बीमारी है
0: जी।
1: या जैसे हमारे बॉडी में सोरेसिस है, वैसे एक स्कैल्प सोरेसिस एक प्रकार है,
0: उसके बारे में भी बता दीजिए। हाँ,
1: तो ये स्कैल्प सोरेसिस हमको वो टेस्ट करने मतलब ट्राइकोस्कोप से समझ में आती है कि स्कैल्प सोरेसिस है या डैंड्रफ है। जो जो लोगों को डैंड्रफ करके डायग्नोस हुआ, 50% लोगों में स्कैल्प सोरेसिस निकला, इसका हमने रिसर्च किया हुआ है। तो स्कैल्प सोरेसिस की ट्रीटमेंट अलग है, हालांकि उसको क्योर नहीं है, बट हम बिल्कुल कंट्रोल रख सकते हैं दवा से। दवा भी बहुत सिंपल है, बहुत हार्श दवा नहीं है, बट रिकरेंस इज वेरी कॉमन। तो लोग फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, तो उसको कुछ चीजें ऐसी होती है कि रिकरेंट होती रहती है। कंट्रोल करना हमारे, जैसे हम डायबिटीज की दवा लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं, हम ऐसे बोलते हैं क्या कि मुझे खाना नहीं है, कितने सालों तक मैं खाऊं?
0: ऐसा तो कभी नहीं हो सकता।
1: तो कुछ चीजों को हम एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए
0: जी। कई शैम्पूज,

0: तरह के विज्ञापन के साथ आते हैं कि वो डैंड्रफ के दुश्मन हैं, क्या ऐसा होता है?
1: शैम्पू डैंड्रफ के दुश्मन है कि शैम्पू डैंड्रफ के लिए है?
0: बताइए कि शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं या नहीं हटाते हैं?
1: नहीं, कुछ शैम्पू डैंड्रफ हटाते हैं, और बहुत बार कैसे होता है कि सेम तरीके का शैम्पू जब आप इस्तेमाल कर रहे हो और कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद वो शैम्पू काम करना बंद हो जाता है।
0: अच्छा, ऐसा भी
1: आपको लगता है कि अभी ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंग्रेडिएंट को कभी कभी ये मैलेजिया फरफर करके एक फंगस होता है, वो काम नहीं करते, तो दूसरा इंग्रेडिएंट हुआ शैम्पू आप ले सकते हो। पर भी आपके नहीं जा रहे तो आपको देखना है कि आपका स्कैल्प सोरेसिस नहीं है ना। आपको नहीं पता चलेगा, दोनों स्कैल्प सोरेसिस और डैंड्रफ बहुत दिखने में सेम दिखते हैं। इससे अच्छा मैं मैसेज देना चाहूंगी कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू आपने ट्राई किया है
0: जी,
1: आपको फर्क नहीं हो रहा है, तो आपको स्कैल्प सोरेसिस है या नहीं है इसकी जान लीजिए।
0: ओके, उसको आपको टेस्ट करवा लेना है। जी, ये एक थंब रूल हो गया।
1: मतलब लोग ऐसे ही बहुत सालों तक एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करते हैं, एक छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और बहुत परेशान हो जाते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो आपको देखना है कि आपको स्कैल्प सोरेसिस है कि नहीं है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये मैसेज जाना चाहिए,
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अब मुझे लगता है एक गाना करते हैं और उसके बाद हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करेंगे, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
1: बहुत बड़ा मुद्दा।
0: यहाँ पिया का घर फिल्म का गाना आ रहा है, ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है ना।

0: डॉक्टर, हमने ये इतनी सारी बातें की तो लोगों को ये समझ में आ गया कि क्या तरीका है बालों की देखभाल का, लेकिन कई बार ये होता है कि बाल तो चले ही गए और एक और बहुत ज्यादा चलन चारों तरफ है कि कोई एक व्यक्ति अपना ट्रांसप्लांट करवा के आता है और एकदम उसका रूप बदल जाता है और सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये क्या किया, तो पता चला कि उसने ट्रांसप्लांट करवाए और बाल, मतलब लुक जो है वो पुराना वाला आ गया। ये तरीका क्या जनरलाइज्ड सब लोगों के लिए कारगर है या ये कुछ कुछ लोगों पर काम करता है?
1: सब लोगों पर कारगर के लिए हमें जानना जरूरी है कि उसका अंडरलाइन कॉज क्या है।
0: जी,
1: अगर अंडरलाइन कॉज है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया या सिकेट्रिशियल एलोपेशिया बोलते हैं, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। अगर हेयर फॉल का कारण अलग है और आप नहीं जानते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करने से मतलब नहीं है। अभी सेफ्टी के इशू में अगर बात करें तो बहुत बड़ी, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट ऐसी हो रहा है आजकल कि बहुत सेंटर पर टेक्नीशियंस हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, टेक्नीशियंस एनेस्थीसिया देते हैं।
0: ओहो हो हो,
1: तो ये गलत बात हो जाती है क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जो भी, ये एक प्रोसीजर है जो लोकल में होती है। जैसे आपके यहाँ हम सूचर करते हैं, समझो आप एक सर्जन से सूचर करवाए या कंपाउंडर से सूचर करना पसंद करोगे?
0: सीधी सी बात है।
1: लोकल एनेस्थीसिया देते हो, डॉक्टर को सब मालूम है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, रिएक्शन हुआ, कैसे मैनेज करना है, कितने अमाउंट में लोकल एनेस्थीसिया देना जरूरी है, अंडरलाइन पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, पेशेंट स्मोकर है या कोई कन्वर्शन की मेडिसिन ले रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, ये सब कौन कर सकता है? डॉक्टर ही कर सकता है।
0: यस,
1: सो अगर इसमें उदाहरण मैं देना चाहूंगी तो अगर मैंने आपको एक चक्कू दिया जो आप मूर्तिकार है, और एक चक्कू मैंने छोटे बच्चे को दिया, चक्कू चक्कू ही है पर छोटा बच्चे के हाथ में बहुत डेंजरस है, और आप मूर्तिकार हैं, आप एक अच्छी मूर्ति बना सकते हैं तो आपके हाथ में बहुत सेफ है।
0: यस,
1: तो आपका सर आपके किसके हाथ में दे रहे हैं वो जानना जरूरी है,
0: बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
1: यस,
0: बिल्कुल। ये हेयर ट्रांसप्लांट की प्रोसेस क्या है और ये कितना महंगा है?
1: ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है
0: जी,
1: क्योंकि ये वन टाइम एक ही दिन में होता है ट्रांसप्लांट, और प्रोसेस ये है कि आपके जो पीछे के बाल होते हैं, मतलब हमारे गर्दन के पीछे के साइड के ऊपर के जो बाल होते हैं वो जल्दी नहीं जाते हैं, मतलब थिन नहीं जल्दी होते हैं, तो वहां से निकाल के रिपोजिशनिंग, बेसिकली वहां से बहुत घने होते, वहां से कुछ प्रमाण से 2,000, 3,000, 4,000 हेयर फॉलिकल्स, मैं हेयर नहीं बोल रही हूँ, हेयर फॉलिकल्स, एक फॉलिकल में शायद दो भी हेयर हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, वो हम जितना एरिया होगा वो हिसाब से गंजे एरिया पर डालते हैं। अभी डालने का तरीका और लगाने का तरीका बताती हूँ। लोकल एनेस्थीसिया में वो रूट्स निकालने पड़ते हैं, तो रूट्स के साथ हेयर होते हैं, साथ में छोटे हेयर होते हैं क्योंकि ट्रिम करना पड़ता है
0: जी।
1: तो रूट्स को हम, जैसे हम झाड़ की सैंपलिंग करते हैं, वैसे रूट्स को निकाल के हम गंजेपन को जगह पर एक निक देते हैं, स्लिट देते हैं छोटी सी, और उसमें हम डिपॉजिट करते हैं ताकि बॉडी उसको रूट्स को लिए और हेयर उसमें से बाहर निकले, बट हेयर निकलने के टाइम रहता है 6 से 9 महीना
0: जी,
1: उसके बाद वहां से बाहर, और आप उसको कॉम कर सकते हैं, शेप नॉर्मल, मतलब आपके ओरिजिनल
0: ओरिजिनल बालों की तरह हो जाते हैं,
1: बिल्कुल ओरिजिनल बालों,
0: जैसे पौधे को यहां से हटा के
1: वहां लगा दिया।
0: जी जी, और आपने कहा कि एक महंगी प्रोसेस है,
1: ये थोड़ी महंगी प्रोसेस होती है,
0: क्या ये फेल्योर भी हो सकती है?
1: फेल्योर रेट बहुत कम है
0: जी,
1: अगर अच्छे सर्जन ने किया तो फेल्योर रेट बहुत कम है
0: जी। यहाँ हम

0: डॉक्टर, इतनी सारी बातें हमने की इसमें ना, महिलाओं की बातें हमने की, पुरुषों की बातें की, अलग अलग उम्र के लोगों की बातें की, बातें टीनेज से शुरू हुई, बच्चों में बालों की जो समस्याएं इन दिनों में आप देख रही हैं वो क्या हैं और क्या उनके निदान और सावधानियां हैं?
1: आप अभी सही पकड़े हो। बच्चों में बहुत कॉमन हो रहे हैं बालों की समस्या
0: जी।
1: उनके रीजन अलग है, जो बड़ों में है वो रीजन नहीं है बच्चों में। फंगल इन्फेक्शन है बच्चों में, बच्चों में एलोपेशिया एरियाटा कॉमन हो रहा है। ये दो चीजें बहुत सारे हमने कॉमन देखे, और जनरली पैंडेमिक के बाद एलोपेशिया एरियाटा बहुत कॉमन हो गया बच्चों में, जो अभी बड़ों में कम दिखाई देता है लेकिन बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है। और इसमें छोटे छोटे ऐसे पैचेस, राउंड राउंड पैचेस, बहुत सारे राउंड राउंड पैचेस आते हैं। बच्चे स्कूल में जाना टालते हैं क्योंकि उनके स्कूल मेट्स उनको चिढ़ाते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो कैप लगाए हुआ कोई बच्चा दिखेगा तो एक तो फंगल इन्फेक्शन होगा उसको, या तो एलोपेशिया एरियाटा होगा।
0: ओके,
1: फंगल इन्फेक्शन के लिए कैप जो पहनते हैं, कोई कैप पहनता है, वो कैप शेयर नहीं करना चाहिए, उनकी कोम शेयर नहीं करना चाहिए। और तुरंत ट्रीटमेंट इसके लिए जरूरी है कि कुछ फंगल इन्फेक्शन जो स्काल्प में होते हैं उससे परमानेंट हेयर डैमेज हो जाते हैं। परमानेंट मतलब वहां कभी बाल नहीं आएंगे।
0: अरे बाप रे।
1: हाँ, तो उसके लिए वो कैरियन कहा जाता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट जरूरी है। और इस

0: इसकी ट्रीटमेंट ऐसे नहीं कि एक दिन दस दिन, इसकी ट्रीटमेंट कभी कभी चार हफ्ते से छह हफ्ते तक भी चल सकती है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है बालों के नीचे के हिस्से तक जाके बैठता है, तो उसको निकालने के लिए टाइम लगता है और ये छह हफ्तों तक मेडिसिन लेनी होती है। तो इनके टॉवल्स अलग, कोम अलग, सोप अलग।
1: अच्छा, इतना सब करना पड़ता है।
0: इतना सब करना पड़ता है
1: जी।
0: एलोपेशिया एरेटा, अभी एलोपेशिया एरेटा की जो बात करते हैं, सब लोग घर का सुनते हैं, इन्फ्लुएंसर का सुनते हैं, कुछ अलग अलग अलग चीजें यूज करते हैं जो नॉन स्पेसिफिक है। इसमें टाइम बहुत निकल जाता है, कभी कभी बहुत साल भी निकल जाते हैं, और जब तक हमारे पास आते हैं उनके पाँच छः साल हो जाते हैं। ये पाँच छः साल इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये टाइम पर जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी जो रीग्रोथ की पोटेंशियल है वो कम होती जाती है।
1: जी, जी, जी।
0: जितना आपने टाइम गंवाया उतना आपका हेयर ग्रोथ की चांसेस कम होती जाती है। तो इस पर रिसर्च अभी लेटेस्ट जो डेवलप्ड हुए है उसमें बहुत सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो बालों की ये जो एलोपेशिया एरेटा पर इफेक्टिव रीग्रोथ 100% पॉसिबल होने के चांसेस है।
1: ओके, तो एक उम्मीद बंधी है।
0: यस, बट ट्रीटमेंट टाइम पर लेना, इट्स अ टाइम बाउंड डिसीज मैं कहूंगी।
1: हमारी पूरी बातचीत में ये बात बार बार आती है कि समय पर सावधान होकर इलाज की तरफ बढ़ना है। यहाँ हम एक गाने के लिए रुकते हैं।

0: इतनी लंबी बातचीत का जो आखिरी मकाम है, मुझे लगता है कि यहाँ ये बात करनी ज़रूरी है कि एक अच्छी लाइफस्टाइल में बालों की सामान्य रूप से देखभाल का क्या पैटर्न होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ जोड़ देता हूँ कि बदलते हुए मौसमों में भी किस तरह से हम अपनी रूटीन लाइफस्टाइल में बालों की देखभाल करते रहें, क्या आइडियल तरीका है?
1: आपका लाइफस्टाइल के साथ आपका शैम्पू कैसे यूज़ करते हो? आप कितने कड़ी धूप में जाते? बहुत बार कड़ी धूप में हम प्रोटेक्ट नहीं करते बालों को, तो कड़ी धूप में से भी आपके हेयर फॉल हो सकते हैं बहुत कड़ी धूप में। तो नॉर्मल शैम्पू, अच्छा वाला शैम्पू जो हार्श नहीं हो, बहुत झाग वाला नहीं हो, रूटीनली आपको 2 से 3 बार हफ्ते में करना चाहिए। साथ में अगर ऑयल लगा के करें 1 घंटा पहले या रात को ऑयल लगा के करें तो बेहतर है। खाने में आप ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कीजिए, जो अभी आजकल आया ऑटोफेजी, ऑटोफेजी और 16-16 घंटे खाते नहीं हैं, उसका असर बालों पर गिरता है। तीसरी बात जो है कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं, तो हमारे इसमें अमाइनो एसिड्स की थोड़ी कमतरता होती है, क्योंकि हमारे वेजिटेबल्स में इतने अमाइनो एसिड्स नहीं होते हैं, तो अमाइनो एसिड लेना ज़रूरी है। फिर आपका प्रोटीन इंटेक भी, बहुत बार वेजिटेरियन लोगों का प्रोटीन इंटेक एडिक्वेट नहीं होता है, तो उस पर आपको ध्यान देना जरूरी है। ये नॉर्मल लोगों के लिए बोल रही हूँ जिसके बाल नहीं झड़ रहे हैं
0: जी।
1: जब आपके बाल झड़ते हैं तो क्या कारण है, रीजन क्या है, वो एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो रीजन के हिसाब से ट्रीटमेंट अलग अलग होती है।
0: बिल्कुल।
1: और सोडा,
0: नींद
1: मॉर्निंग से हो गया, अभी शाम का टाइम, शाम को हेवी खाना नहीं खाना है। आप कहेंगे मैं 11 बजे नॉनवेज खा के सोता हूँ, आपके इंटेस्टाइन सोने के टाइम पर आप उसको इंटेस्टाइन को जगा रहे हो
0: जी जी,
1: तो वो नहीं ठीक है। ओकेशनली ठीक है, पर हर बार डेली डेली होते रहेगा तो नहीं चलेगा। बाहर का आप बहुत सारा चीजें खाते हैं जो प्लास्टिक में आती रहती है, और टेस्ट के लिए एक बार खा लिया ठीक है, पर आपने उसको आदत ही बना लिया तो फिर कैसे होगा?
0: बिल्कुल।
1: तो ये सारी चीजें ये नॉर्मल हेयर को मेंटेन करने के लिए है, बाकी तो फिर बीमारी के लिए तो हम लोग हैं।
0: तो मतलब ये है कि एक तो नॉर्मल जो हमारी एक लाइफस्टाइल को हमको पालन करना है और सावधानियां जरूरी तौर पर रखनी है। डॉक्टर रचिता धुरत, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी जानकारियां आपने बड़े विस्तार से दी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
2: श्रोताओं, हसीन जुल्फों पर, खूबसूरत बालों पर न जाने कितने ही गीतकारों ने गीत भी लिखे हैं। जब हम सजते संवरते हैं तो अपनी हेयर स्टाइल को खास तरह से संवारते हैं। बालों के स्वास्थ्य की किस तरह से देखभाल की जाए कि इनकी सुंदरता बनी रहे, तो आज के सेहतनामा में बालों की समस्या और देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर रचिता धूरत से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग आपने सुना। अगले सोमवार आज ही के दिन एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे हमारे विविध भारती के स्टूडियो में। आपके स्वास्थ्य को लेकर फिर होंगे एक नए विशेषज्ञ, तो सुनते रहिए सेहतनामा। कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है किशोरदन? एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के पहले दिन आज राजधानी बिश्केक में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ संवाद किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिश्केक में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ आत्मीय संवाद किया। प्रधानमंत्री ने भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच मैत्री संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय की ऊर्जा, उत्साह और महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। अपनी किर्गिस्तान यात्रा के दौरान श्री मोदी ने आज बिश्केक स्थित महात्मा गांधी स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री कल शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
0: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए चौथे भारत जर्मनी पर्यावरण मंच की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव तथा जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण, जलवायु संरक्षण और परमाणु सुरक्षा मंत्री कार्स्टेन श्नाइडर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को अधिक मजबूत करने और व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण तथा जलवायु नीति से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश ने 10 साल के लक्ष्य के मुकाबले 4 साल में 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियरों को तैयार करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार का ध्यान वेफर फैब्रिकेशन से लेकर चिप उत्पादन तक देश को वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने पर है।
2: वैश्विक सेमीकंडक्टर

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से व्यापार, ऊर्जा और रक्षा मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के हर प्रयास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बातचीत में नौवहन की स्वतंत्रता और नागरिक सुरक्षा पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने किर्गिज गणराज्य और आर्मेनिया के नेताओं से भी मुलाकात की। वे कल शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे पर समझौते से लंबे समय से चले आ रहे विवाद का समाधान। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मृतकों की संख्या 900 से अधिक हुई। उपकरणों की कमी से राहत और बचाव कार्य प्रभावित, 4,247 से अधिक लोग लापता। और फुटबॉल में एफसी अंडर 20 फुटबॉल एशिया कप के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। श्री मोदी ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने और नौवहन तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी बल दिया। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादो जापारोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिश्केक में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रक्षा, आर्थिक, फार्मा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत और कतर के बीच लंबे समय से मजबूत साझेदारी है, जिसमें ऊर्जा सहयोग एक प्रमुख आधार है। श्री पुरी ने कतर में भारत के नवनियुक्त राजदूत डॉ के शिखर रेड्डी से मुलाकात की। श्री पुरी ने पेट्रोनेट एलएनजी और कतर एनर्जी के बीच 20 वर्ष के एलएनजी समझौते का उल्लेख किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह वृद्धि दर 6.9% थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास दर मजबूत बनी हुई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि सभी क्षेत्रों में वृद्धि बेहद सकारात्मक है।
3: ओवरऑल ग्रोथ इन ऑल सेक्टर्स हैज बीन वेरी पॉजिटिव और ये यही दर्शाता है कि जो प्रकार से इंटरवेंशंस हुए हैं सरकार के वो इम्पैक्ट रख रहे हैं, और जबकि ओवरऑल हालात में चेंजेस है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, उसके बावजूद ग्रोथ रेट इतनी पॉजिटिव है। प्राइवेट और सरकारी दोनों के ही कारण फिक्स कैपिटल ग्रोथ में होता है, और 12% का ये भी दर्शाता है कि जो फ्यूचर क्वार्टर्स की ग्रोथ है उसका भी हम एक अंदेशा देता है कि क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को बड़ी उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये उपलब्धि देश के लोगों की सामूहिक शक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि इस मजबूत आर्थिक प्रदर्शन का श्रेय देश के लोगों और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार द्वारा किए गए सुधार और अर्थव्यवस्था के कुशल प्रबंधन के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जीडीपी वृद्धि की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। एक रिपोर्ट।
4: गृहमंत्री ने कहा कि समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि समझौते से बिहार और झारखंड के बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों किसानों को सिंचाई के लिए और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। श्री शाह ने कहा कि इससे बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में भी सिंचाई और पीने के लिए पानी उपलब्ध होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: सरकार ने देश में चिप निर्माण इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सेमिकॉन योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया है। इसके साथ भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग बाजार का लगभग 10% हिस्सा हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में बताया कि भारत में विकसित हो रहे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम से प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।
5: फैब्रिकेशन में, पैकेजिंग में, इक्विपमेंट में, मटेरियल्स में, इन सब में ट्रेनिंग दी जा रही है, और जिस तरह का इकोसिस्टम बन रहा है बहुत जल्दी 50-60,000 डायरेक्ट जॉब्स हर साल इसमें क्रिएट होंगे। ऑलरेडी डिजाइन में 50-60,000 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैन्युफैक्चरिंग में भी इतना लेवल का इसमें जॉब्स क्रिएट होंगे।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के साथ सक्रिय शासन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित बहुआयामी मंच पीएम प्रगति के अंतर्गत टीबी उन्मूलन प्रयासों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए अंतर मंत्रालयी समन्वय को मजबूत करने पर बल दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने एसिड की खुदरा बिक्री को

नमस्कार दोस्तों, चर्चा के साप्ताहिक मंच पब्लिक स्पीक में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, एक दौर था जब बैंकों के बड़े बड़े दरवाजे देखकर आम आदमी हिचकिचाता था, साहूकारों के चंगुल में फंसकर पीढ़ियां कर्जे में डूब जाती थी। लेकिन आज वक्त बदला है। आज आपकी जेब में रखा मोबाइल

0: ही आपका बैंक खाता बन गया है, या कहें वित्तीय समावेशन का औजार बन गया है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन खाता हो, रेड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि योजना हो, या छोटे कारोबार के लिए मुद्रा लोन हो, वित्तीय समावेशन ने आखिरी पायदान पर खड़े आदमी को भी ताकत दी है और उसे सशक्त बनाया है। जब एक महिला को स्वयं सहायता समूह से लोन मिलता है और वो अपनी सिलाई की दुकान या फिर बुटीक खोलती है, तो वो सिर्फ एक दुकान नहीं खोलती बल्कि एक पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनता चला जाता है। यही तो है असली नागरिक सशक्तिकरण, जब पैसा सीधा आपके खाते में आता है बगैर किसी बिचौलिए के, तो व्यवस्था पर भरोसा और बढ़ता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक ऐसे बदलाव की जो देश के आम नागरिक के जीवन को और बेहतर और स्वाभिमानपूर्ण बना रहा है। और आज इसी बदलाव की जानकारी पर आपसे चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी को और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक और विशद अनुभव के धनी रमेश कुमार अरोड़ा जी को। स्टूडियो में आप दोनों ही विशेषज्ञों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को, मेरा नमस्कार।
0: और दोस्तों हम बताएं कि विषय जो है हमारा, बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने पर परिचर्चा। दोस्तों हमारे स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं, नंबर हैं 0112331081 और 23717117 23717106 और 233144444। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर से फोन कर रहे हैं तो भूलिए नहीं 011 जरूर डायल कीजिए। और व्हाट्सएप नंबर की भी सुविधा है जिस पर आप हमें सवाल अपने भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9289094044। तो दोस्तों हम इंतजार करेंगे आपकी जिज्ञासाओं का और बात करेंगे हम अपने विशेषज्ञों से भी। और मैं देख रहा हूं कि अंशु कुमार जी जुड़ रहे हैं हमसे पटना बिहार से, सुनते हैं उनका सवाल। जी जी अंशु कुमार जी बोलिए।
2: नमस्कार सर।
0: जी जी जी, क्या है आपकी जिज्ञासा? हाँ हाँ,
2: स्वागत। सवाल यही था जो हम लोग को जब भी ब्याज है हम लोग हेलो
0: जी जी
2: हम लोग जब भी ब्याज है तो हम लोग को जो पैसा मिलता है तो बैंक में पैसा निकालने से मिलता है, क्या क्या हम लोग को करना चाहिए? क्या हम लोगों को ओटीपी भी बताना चाहिए? अगर ओटीपी बताएंगे तो क्या क्या हो सकता है? और आधार कार्ड नंबर और खाता संख्या इस हम जब बता देंगे तो क्या क्या होगा?
0: बैंक से पैसा निकालने के विषय में इनका ये सवाल है कि ओटीपी नंबर अगर कोई और पूछता है तो संभवतः मैं जितना समझ पाया इन्होंने पूछा है तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या यदि कोई और पूछ रहा है तो क्या वो बताना चाहिए?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी भी कोई भी बैंक आपसे ओटीपी की जानकारी नहीं मांगेगा, ना आपकी पूरा आधार नंबर की कोई डिटेल मांगेगा। ओटीपी केवल आपका पर्सनल के लिए है। जब भी आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, ऑनलाइन निकाल रहे हैं, तो आपको ओटीपी खुद आपको डालना है और उसी तरह से आपका पैसा ट्रांसफर हो पाएगा। या निकालना है एटीएम पर जा रहे हैं तो आपको अपना पिन जो है अपने आप कॉन्फिडेंशियल रखना है, ना कि किसी को बताना है। किसी को बताएंगे तो फ्रॉड होने के चांस पूरे हैं।
0: जी हाँ, ओटीपी तो दरअसल आपके पास है और उसे यदि आप किसी के साथ साझा करते हैं तो उसमें बेहद जोखिम है। और जैसा कि आपने बताया, हमें महाप्रबंधक आप रहे हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रमेश कुमार अरोड़ा जी बता रहे थे, तो आप इस सलाह को ज़रूर आप फॉलो कीजिए, इस पर अमल कीजिए और अपना ओटीपी जो है किसी को बताइए नहीं। और अब मैं ये प्रश्न करना चाह रहा हूँ शुभमोय भट्टाचार्य जी से, जो आर्थिक विश्लेषक हैं, कि आप हमें बताइए, कृपया हमारे श्रोताओं को और हमें समझाइए कि ये जो वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, दरअसल कैसे इसे समझा जाए कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी?
3: सबसे पहले आकाशवाणी को नमस्कार मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
0: नमस्कार। जी
3: मैं वित्तीय समावेशन बहुत बड़ी शब्द है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस पर भी हम बहुत सारे शोध पत्र लेख वगैरह प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीधा उदाहरण देता हूं। आज किसी भी भारत के कोने में कोई भी खुदरा दुकान में आप जाइए, सबसे पहले दुकानदार आपको किसी भी चीज के बिक्री के लिए सबसे पहले वो QR कोड सामने पकड़ा देगा। उनको पता भी नहीं है कि QR कोड कैसे चलता है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, लेकिन उनको ये भरोसा है कि ग्राहक जब उनसे कोई सामान खरीदते हैं QR कोड से पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट बिल्कुल कंफर्टेबली उनके पास उनके बैंक खाते में चला जाता है। वो भी अपना जब कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं उसी QR कोड के जरिए UPI में अपना पैसा अपना खाता देख लेते हैं और खाते और खुश होकर अपना जो भी खरीदारी वगैरह है उसका निपटाना करते हैं।
0: जी
3: ये जो चीज हुआ है लोगों को पूछने की जो जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो मिल गया है उनको, जो जो अधिकार मिल गया है, मैं इसी को ही फाइनेंशियल इंक्लूजन मानूंगा कि लोग जानते हैं समझते हैं कि बटुए में पैसा रखकर या कहीं पे कुछ भी चीजों का जो पुराने समय का जो और पुराने समय कहना मतलब कुछ ही साल पहले का
0: जी जी
3: जो ये अनुभव था वो बिल्कुल लोगों के दिमाग से मानो बिल्कुल हट गया है, बिल्कुल इरेज हो गया है। मैं इसी को ही वित्तीय समावेशन मानूंगा। इसके बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे इसके स्टेप्स हैं, बहुत सारे इसके टेक्नोलॉजी है और इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है कि भाई हम पैसा कहीं से भी ले सकते हैं, किसी भी तरीके से मिल सकता है, बस हमें एक QR कोड सामने होगा, वो हमारा पूरा सब काम के लिए अवेलेबल है। आज की रुपये का शायद तो रुपये का चेहरा शायद बहुत जगह पे लोगों को याद नहीं होगा कि रुपये का सिंबल क्या है, लेकिन QR कोड क्या है ये बच्चा बच्चा तक समझता है। और मैं समझता हूं ये भारतीय फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेश का ये सबसे बड़ा और सबसे पुष्ट उदाहरण है।
0: जी शुक्रिया। मैं मुखातिब होता हूं अब अरोड़ा साहब से जो हमारे विशेषज्ञ हैं, और उनसे मैं खास तौर पर ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने वित्तीय समावेशन के लिए देखिए जनधन योजना, मुद्रा लोन, पीएम स्वनिधि जैसी कई बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, तो आपका जो ये वर्षों का अनुभव है वो क्या बताता है कि इन योजनाओं में जमीनी स्तर पर आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को किस तरह से प्रभावित किया है? तो ये तो है हमारा आपसे सवाल, लेकिन एक और सवाल हमारे पास एक श्रोता का दिखाई दिया था अभी, लेकिन शायद अभी लाइन पर नहीं है। जी हाँ, तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह से आम आदमी के जीवन को, खासकर महिलाओं और छोटे दुकानदारों को इन योजनाओं ने प्रभावित किया है।
1: जैसा कि अभी भट्टाचार्य जी ने बोला है, वित्तीय समावेशन का केवल ये नहीं है कि हम एक बैंक में खाता खोलें। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि बैंक में अकाउंट हो, उसे हम क्रेडिट सुविधा दें, छोटे जो हमारे लोग हैं या जो भी बैंक में आ रहा है उसको इंश्योरेंस की सुविधा दें, पेंशन की सुविधा दें और डिजिटल पेमेंट कराएं, तो तब हम ये मानेंगे कि हमारा वित्तीय समावेशन, केवल बैंक खाता ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये सारी फैसिलिटी भी हम दें। जहां तक बात है कि कितना बेनिफिट हुआ है सब लोगों को इसे वित्तीय समावेशन से, तो सबसे बड़ी बात जो है मिडिल मैन का, इनका निवारण हुआ है। जैसे गवर्नमेंट की कोई LPG की है, फर्टिलाइजर है, पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये पैसा जो है डायरेक्ट वह खाते में जमा हो रहा है, मिडिल मैन इसमें से बिल्कुल हट गया। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा एक फायदा ये हुआ है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जो गांव में लोग हैं, जो बीच में, उन्हें मिडिल मैन की जरूरत नहीं है, सीधा पैसा उनके खाते में जा रहा है। दूसरा, जो इनफॉर्मर मनी लेंडर्स हैं उनसे जो 40-50% 60% तक ब्याज पर पैसा उठाते थे, वो जब ये मुद्रा योजना आई, जब ये स्वनिधि योजना आई, इसके थ्रू क्या हुआ, कि ये जो हमारे छोटे हैं गांव में किसान हैं, जो रेड़ी पटली वाले हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, इनको जो है मनी लैंडर के पास ना जाके सीधा बैंकों के साथ जोड़ा गया है वित्तीय समावेशन के थ्रू, तो उनको ये बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। साथ में डिजिटल फाइनेंस का, जैसे अभी बात बताया डिजिटल का, यूपीआई के थ्रू सारी पेमेंट आपका यूपीआई के थ्रू हो रही है, तो कैश का ट्रांजेक्शन जो है कम से कम हो गया। और जो रूरल क्रेडिट असेस है वो हमारा बढ़ रहा है वित्तीय समावेशन के थ्रू। तो ये सारी चीजें होने के बाद साथ में हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है, पेंशन की सुविधा अटल पेंशन योजना जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और इसी तरीके से हमारी इंश्योरेंस की स्कीम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसके थ्रू पेंशन की सुविधा भी मिल रही है, साथ में इंश्योरेंस की सुविधा मिल रही है, और डिजिटल पेमेंट भी हो रहा है, क्रेडिट की सुविधा हमारी मिल रही है, और साथ में बैंक अकाउंट पीएमजेडीवाई के वो भी खुल रहे हैं।
0: जी, तो आपने इन तमाम सुविधाओं की जानकारी दी हमें, जनधन योजना, मुद्रा लोन और पीएम स्वनिधि के अलावा अटल पेंशन की और जो बीमा की भी जो योजना है उनके विषय में आपने चर्चा की। तो आज हम देखें तो यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग की वजह से वित्तीय लेन देन तो काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड और घोटाले भी काफ़ी बढ़े हैं। तो डिजिटल रूप से सुरक्षित रहने के लिए आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को, क्योंकि प्रायः ऐसी घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं, प्रचार माध्यमों से सुनते हैं कि बहुत सारी धोखाधड़ी की जो घटनाएं हैं वो अप्रिय घटनाएं वो देखने में आती हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या आपकी सलाह होगी?
1: ये बिल्कुल सही है कि डिजिटल पेमेंट यूपीआई के थ्रू जो हमारी पेमेंट हुई है इससे हमारा काफी सुविधा हुई है, लेकिन साथ साथ इसके साथ रिस्क भी हुए हैं जिसके लिए हमें सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट बात है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ओटीपी आप किसी को शेयर ना करें, कोई अनजान कोई लिंक ना खोलें, ये सबसे जरूरी है, तभी आप इनसे बच सकते हैं। तो साथ में फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा आजकल प्रोग्राम है कि फाइनेंशियल लिटरेट करना बहुत जरूरी है, सभी को बताना पड़ेगा कि हमें जहां ये हमें फायदा हो रहा है यूपीआई से, क्योंकि डेली बेसिस पर 60 से 66 करोड़ का पर डे की जो है ट्रांजेक्शन हो रही है रफली।
0: जी जी,
1: और आप पर डे 20 ट्रांजेक्शन यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, और 1 लाख की मॉनिटरी कैप रखी हुई है और 5 लाख की कैप रखी है अगर आप हॉस्पिटल को या कहीं टैक्स वगैरह के लिए या स्कूल वगैरह पेमेंट करें। तो जब इतना बड़ा लेन देन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो साथ में थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी है। और हमारे साथ एक श्रोता फिर बिहार सासाराम से जुड़ रहे हैं, अमित उपाध्याय। तो उपाध्याय जी, क्या सवाल है आपका, कहिए।
4: नमस्कार, जीते हुए विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बहुत बधाई कि हमारे जनधन खाता जो है खुले हैं 59 करोड़, ये बहुत अच्छा दिलचस्प है। इसमें भी मैं भी कोरेस्पोंडेंस नहीं चलाता हूँ, बीसी हूँ। और मेरा एक सवाल था सर कि जिससे अभी बजट में हम लोग जैसे कि यूपीआई से जो पेमेंट हम लोग करते हैं अभी, तो यूपीआई से जो बढ़ा हुआ है इसमें कुछ चार्जेस से कुछ बात हो रही थी कि इसमें घट रहा है या बढ़ा है, इस पर थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा प्रकाश डाल देना कि इसमें बढ़ा है या फिर घटा हुआ है। जैसे हम लोग जितना ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर जितना, जैसे हम लोग क्यूआर कोड से जो हम लोग पेमेंट करते हैं इसका, इसमें हम लोग जो महीना मंथली बेसिस पे इसको हम लोग गणना करते हैं, तो उसके हिसाब से इसको कुछ चार्ज करते हैं या टैक्स वगैरह, इसको थोड़ा सा।
0: बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है और हमारे विशेषज्ञ आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे।
1: हाँ, ये जो चल रहा है अभी न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा, यह बात अमित जी सही बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कस्टमर को कोई अलग से पेमेंट नहीं लगेगी, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। ये अगर एमडीआर के जो चार्ज लग रहे हैं वो भी जो बड़ी ट्रांजेक्शन्स के लिए हैं, वो जो जो जैसे दुकानदार वगैरह हैं उनके ऊपर चार्जेस लगने का प्लान है, अभी भी वो हुआ नहीं है फाइनल, इस पर डिस्कशन चल रहा है। लेकिन ये क्लियर कट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि आपको इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, यानी कस्टमर को इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपको कोई चार्ज नहीं देने पड़ेंगे।
0: जी, तो उम्मीद है कि आपकी इस जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल हो गया है। और हमारे साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से जुड़ रहे हैं MR चौधरी। कहिए चौधरी साहब, क्या है
5: बात?
0: जी कहिए सवाल।
5: ये मैंने फाइनेंस में भी वहां से सेक्रेटरी को चिट लिया, उसका कोई जवाब नहीं है।
0: आपका
5: आम पब्लिक के लिए
0: जी, तो लगता है संपर्क कट गया है। और आपसे हम, खैर, एक और हमारा जो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो हम अक्सर प्राय

0: लोगों से सुनते हैं वो ये है कि ऋण लेने के लिए व्यक्ति कहीं पर जाता है तो अक्सर उसका जो क्रेडिट स्कोर है या सिबिल स्कोर जो है वो बड़ा मायने रखता है, लेकिन बहुत से लोग इस बारे में जानते नहीं है कि कैसे एक आम आदमी अपने इस क्रेडिट स्कोर को बेहतर बना सकता है। और ये जो स्कीम्स हैं, खासतौर पर ये जो समावेशन की जो हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की ये जो योजनाएं हैं, क्या इनमें भी ये स्कोर मायने रखता है? जैसे कि हम कोई फर्ज कीजिए कि वाहन लोन लेने के लिए या मकान बनाने के लिए जाते हैं तो वो देखा जाता है, तो इस विषय में क्या व्यवस्था है?
1: जैसे प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना है, इसमें कोई भी सिबिल वगैरह की जरूरत नहीं है, कोई बैंक आपसे सिबिल नहीं मांगेगा। इसमें जैसे फर्स्ट ट्रांच में 15,000 रुपये लोन मिलता है, सेकंड जो है 25,000 है, थर्ड ट्रांच में 50,000 है, तो इसमें कोई भी आपको जो है सिबिल वगैरह की बैंक नहीं मांगेगा, ना ही सिबिल की जरूरत पड़ती। हाँ, मुद्रा योजना में जरूर है कि उसको कोई डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, अगर कोई डिफॉल्टर है तो उसमें मुद्रा योजना में अधिकतर हमारा
0: जी बिल्कुल आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि सिबिल स्कोर की कहां जरूरत है और कहां नहीं। एक सवाल हम ले रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं श्रोता शिमला से, और राकेश जी कहिए आपका क्या प्रश्न है।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे कि हम दृष्टिहीन लोग हैं, हम बैंक नहीं जा सकते, हम अपना जो है बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, कृपया करके आप बताइएगा।
0: हम अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं, तो इस विषय में तो जाहिर है चूंकि बैंकिंग से सीधे तौर पर हमारे विशेषज्ञ जुड़े रहे तो वो आपकी जिज्ञासा का समाधान बिल्कुल करेंगे। जी
1: ऐसा है कि बैंक में जो भी आपके साथ दूसरा अकाउंट अगर होल्डर साथ में आपने रखा हुआ है, क्योंकि ट्रांजैक्शन होती है तो कभी दूसरा साथ में होगा, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हैं। और या आप अपना जो बैंक में जाके जो वहाँ का स्टाफ है उससे भी बैलेंस पता कर सकते हैं, तो यही एक तरीका है जिससे कि आप अपना बैलेंस पता कर सकते हैं।
0: शुभमोय सर, आपसे हमारी जो जिज्ञासा है वो ये है कि एआई की क्या भूमिका है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में, इसे एक विस्तार देने में, क्योंकि हमने अखबारों में पढ़ा था कि भारतीय जो रिजर्व बैंक है वो काफी इस विषय में सक्रिय रहा, तो इस पर कुछ हो सके तो प्रकाश डालिए।
3: बिल्कुल, और सबसे पहले मैं कहूंगा कि एआई, आप अभी सवाल का डिस्कशन कर रहे थे किस हमारे प्रश्नकर्ता से कि सिबिल स्कोर जिसके पास नहीं है उनको कैसे लोन मिल सकता है। तो एआई, भारत सरकार ने एक नया आयाम शुरू किया है, वो है यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। ये एआई की मॉडल है, डिजिटल फुटप्रिंट, जिससे आम जनता जिनके पास सिबिल स्कोर नहीं है या सिबिल के किसी वजह से वो आए नहीं है, तो उनका जो पेमेंट, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो क्यूआर कोड से, यूपीआई से वो पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट मिल रहा है उनको, वो देखकर ही, वो सिर्फ वो देखकर ही एआई एक यूनिफाइड लेंडिंग का सिस्टम समावेशन शुरू किया है। ये बहुत बड़ा आयाम है जिससे हम कह सकते हैं फ्रिक्शनलेस क्रेडिट अवेलेबल होगा भारत के हर नागरिक को, यानी कि एक वित्तीय समावेशन का ये एक इतना बड़ा चीज है जिसको हम कह सकते हैं कि क्रेडिट लेंडिंग के मामले में ये एक नया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये इतना बड़ा इसका प्रारूप तैयार हुआ है कि जिससे एपीआई बेस्ड फ्रेमवर्क से सबको सारे द लास्ट माइल जिसे आप कहते हैं जो भारतीय है उनको भी क्रेडिट मिलेगा सिबिल के ऊपर या क्रेडिट स्कोर के ऊपर, उनको निर्भरशील नहीं रहना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी एक चीज है जो दुनिया में इसका कोई पैरेलल नहीं है, इस तरह का कोई एडवांसमेंट नहीं हुआ है।
0: महत्वपूर्ण जानकारी शुभमोय जी, हम आपके पास फिर लौटेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक श्रोता दिल्ली से हैं लाइन पर, धर्मवीर जी कहिए क्या है आपकी जिज्ञासा।
4: मुनीश जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ, हमारे एक्सपर्ट को मेरा नमस्कार।
0: सर
4: मैंने पिछले साल 2025 में 29 सितंबर को एक लगभग 30 लाख की पेमेंट एक सरकारी बैंक से मैच्योर हो गई थी, तो मैं अदर बैंक से प्राइवेट बैंक में जहाँ थोड़ा सा इंटरेस्ट है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था तो हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया था, पर वो 29 तारीख की बजाय वो हमारे को पेमेंट हमारी 3 या 4 अक्टूबर को वहाँ शो कर रही, तो ये 5 दिन हम परेशान रहे, ऐसे में हम किससे जानकारी लेते, क्योंकि वो कहते हैं कि पेमेंट तो आपकी यहाँ निकल गई है, फिर किसी ने बताया कि बीच में इसका एक नेटवर्क होता है जो चेक करता है कि ये फ्रॉड तो नहीं निकाली गई पेमेंट है, ऐसा भी होता है तो अच्छी बात है, पर हम लोग तो आम आदमी तो नहीं समझ पाता कि ये परेशानी हो गई है, तो टेंशन आम आदमी को ज्यादा बढ़ जाती है, इसके बारे में थोड़ा समझाएं और राय दें, धन्यवाद।
0: जी जरूर जरूर
1: धर्मवीर जी, ऐसा है कि जो भी अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप डायरेक्टली पहले बैंक को लिख सकते हैं, और अगर आपकी वहां से बैंक से शिकायत पूरी नहीं हो पा रही, ठीक नहीं हो पा रही, तो ओम्बड्समैन होते हैं बैंक में, आप उनको डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर वहां से भी आपको सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिल पाता तो आप आरबीआई के ओम्बड्समैन को भी अपनी शिकायत भेज सकते हैं और वहां से अपना शिकायत का निवारण करा सकते हैं।
0: जी, तो उम्मीद है कि धर्मवीर जी आपको आपकी जिज्ञासा का ये समाधान हो गया होगा और आप इस तरह से संपर्क करेंगे तो आपको अपनी शिकायत के समाधान में सफलता मिलेगी। जो श्रोता हमसे अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, चर्चा का साप्ताहिक मंच है ये हमारा, और आज हम बात कर रहे हैं बैंकिंग और क्रेडिट तक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन बढ़ाने और नागरिकों को सशक्त बनाने के विषय पर चर्चा, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभ मोए भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है, आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी टैग Ask AIR के जरिए अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। ये कार्यक्रम दोस्तों हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। शुभमोय जी, आपसे हम बात कर रहे थे कि AI ने जो भूमिका निभाई है इस वित्तीय समावेशन को संभव बनाने में से विस्तार देने में, तो उसमें आपने बताया कि किस तरह से जो लैंडिंग सिस्टम है उसमें किस तरह से AI मददगार हुई है और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो AI ने संभव कर दिखाई है।
3: अभी जो आप प्रश्न ले रहे थे धर्मवीर जी से दिल्ली में
0: जी,
3: और जो सवाल कर रहे थे कि उनके अकाउंट में कोई कार्ड छुपी हुआ है यानी कुछ इधर उधर हुआ है नहीं, इसको इस संभावना को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने MuleHunter.AI करके एक बहुत पावरफुल टूल निकाला है
0: जी।
3: और उस टूल का मुख्य उद्देश्य यही है कि बैंकों में कोई ऐसे अकाउंट्स जो साइबर क्राइम को प्रोत्साहन देने के लिए, साइबर क्राइम को मदद करने के लिए खुले गए हों, किसी तरीके से वो उनको ब्लॉक करना, और ये AIML पावर टूल ट्रांजैक्शन पैटर्न को, मतलब जो कि उस अकाउंट से जुड़ा हुआ जिस जो भी फंडिंग तो जा रहा है उसको रियल टाइम में निगरानी करते हैं, उसमें उसके ऊपर अपना रेड फ्लैग इश्यू करते हैं, जो कि साधारण दृष्टि से एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं, आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, बैंकर ट्रेन होते हुए भी उनके लिए इतना डिटेल देखना इम्पॉसिबल रहता है, और इस चीज को कि किसके किसका अकाउंट का पैसा किस वक्त कहां से अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते वक्त कोई वही म्यूल अकाउंट या दूसरे अकाउंट में पहुंच ना जाए या उसके थ्रू से कुछ ट्रांजैक्शन ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, जो एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के थ्रू से, तो ये दोनों ही लोगों के लिए बहुत बड़ा जिसे कहते हैं आयामी चीज संभव होगा।
0: महत्वपूर्ण ये जानकारी है, बड़ी उपलब्धि है AI के माध्यम से। और हमारे एक और श्रोता सोलापुर महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं हमसे, प्रकाश राउत, कहिए प्रकाश जी क्या है आपकी जिज्ञासा।
5: मेरा ये प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड तो अच्छा है
0: जी,
5: क्रेडिट कार्ड अच्छा होता है, पर कोई कारण से वो उसकी जी किस्त बिल होता है जो बाउंस होगा उसके ज्यादा दंड होते हैं, ज्यादा चार्जेस लगते हैं, उस पर जीएसटी बहुत लगता है, इसके रिजर्व बैंक की क्या पॉलिसी होती है, इसके क्या कारण है?
1: प्रकाश जी, ऐसा है कि क्रेडिट कार्ड में जब भी आपको काफी ग्रेस पीरियड मिलता है तो आपको जो ड्यू डेट है उस तक पूरा पैसा आपको जमा कराना आवश्यक है, अदरवाइज आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, इंटरेस्ट है जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। तो आपको बेटर है कि जो भी आप में क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है पेमेंट की, उस डेट तक आप पूरा पूरा पैसा जो है बैंक का जमा कीजिए, अदरवाइज आपको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है और ब्याज भी आपको देना पड़ेगा।
0: जी, एक और सवाल हमारे पास आया हमारे श्रोता मनोज पानसे जी का, और आप पूछ रहे हैं कि बैंकिंग में जो डिजिटाइजेशन आया है और साइबर फ्रॉड जैसी घटनाएं हो रही हैं, उससे उसके लिए क्या प्रयास हो रहे हैं, क्रेडिट पाने के लिए किस प्रकार के उपाय और प्रयास हमें करने होंगे, ये इनका सवाल है।
1: ऐसा है कि जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, अपने कोई लिंक ना खोलें जो अननोन है या ओटीपी किसी को शेयर ना करें, लेकिन फिर भी अगर फ्रॉड हो गया है तो उसके लिए 1930 एक 1930 साइबर हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही अभी रिसेंटली ऐसा भी होने जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है आपको बतानी पड़ेगी कि इमीडिएटली क्रेडिट ना होके जाए, उसमें कुछ टाइम लग के आएगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काफ़ी कुछ इसमें प्रयास किए जा रहे हैं कि कम से कम जो है लोगों को इस दुर्घटना से बचाया जा सके, फ्रॉड से बचाया जा सके, लेकिन सावधानी आपको खुद को रखनी बहुत जरूरी है।
0: जी देखिए, अब एक और सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं इस विषय में वो ये है कि जैसे स्टार्टअप कोई अगर युवा करना चाहते हैं शुरू, तो शुभम मोहित जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो वो किन दस्तावेजों के साथ तैयार रहें और बैंक से लोन लेने के लिए जब वो जाते हैं इस तरह के किसी उपक्रम के लिए, तो क्या चीज़ें जिनका उन्हें ख्याल रखना चाहिए?
3: ये बहुत अच्छा सवाल है, और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि नए उद्यम लेकर जब हमारे युवा युवा पीढ़ी जब जाते हैं प्रोग्राम अपने अपने अपने स्कीम को साकार करने के लिए, सबसे पहले हालांकि बैंक और में सब ने कहा था कि बहुत सारे जैसे मुद्रा स्कीम्स हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि उससे भी पहले अपना जो QR कोड है उसके जरिए उनका जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड लेकर, अगर वो स्टार्टअप इंडिया की जो पॉसिबिलिटीज हो उसके तरफ अगर ध्यान दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक सशक्त माध्यम आ गया है जो है UPI। दूसरा, इसी साल RBI और नीति आयोग दोनों ही एक बहुत बड़ा आयाम शुरू किए हैं, वो ये है कि मिशन डिजिटल श्रम सेतु
0: जो
3: अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है।
0: महत्वपूर्ण है जानकारी, और शुभमोय जी दरअसल समय की है थोड़ी सी सीमा, बहुत सुंदर आपने जानकारी दी हमारे श्रोताओं को, और अब अपने उन तमाम श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन और डिजिटल माध्यम से कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व महाप्रबंधक रमेश कुमार अरोड़ा ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत की, आप दोनों विशेषज्ञों का भी धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आपकी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हम हमेशा उनका इंतजार करते हैं, और आप हमें जरूर लिखिए AIRNSDtalks@gmail.com पर, और इसके साथ ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दोस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic today. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that India-Russia relations continue to strengthen on the basis of the principles of a special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia today. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Calling for safeguarding the freedom of navigation and commerce, Mr. Modi emphasized that civilians and civilian infrastructure, including commercial shipping and seafarers, must not be harmed under any circumstances. Tomorrow, on the final day of his visit to Kyrgyz Republic, Prime Minister Modi will address the 26th summit of Shanghai Cooperation Organization. In Uttar Pradesh, at least 11 people, including 2 children, were killed and 5 others were critically injured in a massive explosion at a firecracker factory in Kaushambi. The firecracker manufacturing unit was reportedly being operated from a house situated in agricultural fields. President Draupadi Murmu has expressed grief over the loss of lives in the accident that occurred in Kaushambi. In a social media post, she conveyed condolences to the families of those who lost their lives in this unfortunate incident. President Murmu also prayed for the speedy recovery of the injured. Prime Minister Narendra Modi has expressed grief over the loss of lives due to a mishap at a firecracker factory in Kaushambi. In a social media post, Mr. Modi extended his condolences to those who have lost their loved ones. The Prime Minister also prayed for the speedy recovery of the injured. The Prime Minister also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from Prime Minister's National Relief Fund to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. India's real GDP has observed a growth rate of 7.8% during the first quarter of current financial year against the growth of 6.9% during the same period of the previous financial year. The Ministry of Statistics and Programme Implementation today released the quarterly estimates of GDP for the first quarter from April to June of the current financial year. In football, India began their Under-20 Asian Cup 2027 qualifying campaign on a winning note, defeating Syria 1-0 at Tashkent today. Singamayum Shami scored the decisive goal in the 86th minute to give India all 3 points in their opening Group B match. India have been placed in Group B alongside hosts Uzbekistan, Syria and Bangladesh. India will play their next match against host Uzbekistan on Thursday. In table tennis, India's Ankur Bhattacharya has won his maiden men's single title at the WTT Fedor Olomouc tournament in Czech Republic. The world number 78 defeated third seed Denny Kozel of Slovenia 3-1 in the final. Ankur had earlier secured the men's doubles gold with compatriot Akash Pal. And that is the end of this news bulletin.